मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: FM 96.7.
1: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.

0: जी मैं ताहिर नैयर, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।
1: अल्लाह वा बरकातहु। संगीतो दोस्तों, बहनों, भरारो, सजनों, बेटो ते मित्रों, मैं अज़ीम खान प्रोग्राम अपना ग्रह कीर्तन सुनी खिदमत च हाजिर होया। थोड़ा जिहा जनाब हाजी मोहम्मद मोहसिन साहब प्रोग्राम में शंबर सलाम अर्ज करने। इन्हों तो अलावा जनाब नंबरदार राजा सफैल अहमद खान साहब नाल बंदो साडा प्रोग्राम में शंबर मोहम्मद मकसूद आप रठवा मीरपुर कश्मीर जनाब मौजूद है। तो इन्होंने बुझने पाले पियो गीत करने जनाब फैजाद सफेद ना खान खान साहब उस तो बाद जनाब नंबरदार सारी नंबरदार गुलराज साहब ते उस तो बाद राजा मतरूब खान साहब तो बाकी जितनी भी थोड़ी टीम ही उन्हें सारे ने ना बिस्मिल्ला बाकी टीम सारी जनाब बिस्मिल्ला।

FM 96.7 इस दिन के इन तो सांस तक पेश करने हैं जनाब अपनी मीठी मीठी मार्च 7 FM अगर तुम सारे स्टूडियो मचोगे स्टूडियो बीच सर नंबर 4261-8181 ते जे सो शर्मिले जो ना चाहे कि थोड़ी आवाज साढ़े तक पुजे तो व्हाट्सएप पर सुख स्नेहा लिखी है जनाब भेजी छोड़े मास्टर मोसर होने तरह 0793984939 साढ़े प्यारे भाई जनाब चेयरमैन मोहम्मद महमूद खान साहब प्रोग्राम में शामिल है इन्होंने तलक गगनाड़ा कोटली आजाद कश्मीर आलम हकीम शफील हमेशा साढ़ा साथ देने जनाब तो आखने जी कि नाइस प्रोग्राम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब तो हूँ ये अगले माइए तो टप्पे चेयरमैन जी स्पेशली तुसा तो बाकी जितने भैन भ्रा सौजूद है उन्होंने सारे बिस्मिल्लाह जी चेयरमैन जी

0: जनाब चौधरी जनाब साढ़े केह् आखने के तारक महमूद साहब दरिया जट्टा आह्ले उन्होंने फरमाइश असें पेश की उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जी तुसें फरमाइश पसंद आई उसी तो असें जरूर दस्या है कि फरमाइश तुसें पसंद आई कि नहीं तो हम जुलने ब्रेक नहीं तरफ तो मिलने ब्रेक तो उस पार
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: सुनिए सुनिए सुनिए पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी गुलाब जामुन लड्डू रसमलाई फलूदा हलवा पूरी
3: समोसा चाट नमक पारे जलेबी गाजर हलवा हर किस्म के केक और मिठाई जो सबको पसंद आई
2: लजीज चिकन पेस्ट्री लैम्ब पेस्ट्री सैंडविच चिकन पनीनी दही बल्ले और किबाब सब कुछ ही लाजवाब पर्ल बेकर्स 640 Stanyford Road शेफील्ड S94LP टेलीफोन 0114296092 पर्ल Bakers.
4: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
5: Listening to Link FM.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रणदीप चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शफील से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शफील से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: You are listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00571-0009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: ये तो सब क्यों परेशान खलते हुए हो जी
7: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन से एमओटी सेंटर लेके जाऊं
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने कोई कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश اخلاق शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
7: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
8: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.
11: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह

0: your home.
1: नायाब टेकअवे में पेरी पेरी चिकन, बर्गर्स और करी डिशेस ऐसी कि आपको अपने वतन की याद दिलाएं.
0: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: जिसके खानों के लिए सब हैं बेताब, वो है नायाब, वो है नायाब. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
2: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई किराए नी गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है ते द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाकेयां विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
3: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
8: Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua. Ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada. Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua. ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा.
9: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
10: My name is Shireen.
11: My name is Abdul Rahman.
12: My name is Sai Mudassir.
13: This is Rahul.
14: My name is Rizwan Ishraq.
15: My name is Asham.
16: My name is Azan Mudassir.
17: This is Ariba and you are listening to Link FM.
3: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
9: Link FM.

हैरान हूँ इस बात पे तुम कौन हो क्या हो, हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुद।

रखा है, रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। देखे तदबीर के पंछी को उड़ाने तुमने, दामे तकदीर भी हर समत बिछा रखा है। करके आरायशें कौनैन की बरसों तुमने, खत्म करने का भी मंसूबा बना रखा है। लामकानी का बहरहाल है दावा भी तुम्हें, नहनु अकरब का भी पैगाम सुना रखा है। ये बुराई वो भलाई, ये जहन्नुम वो बहिश्त, इस उलट फेर में

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जो ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि ये प्रोग्राम है कवाली स्पेशल, और आपका और मेरा साथ होता है रोज, सोमवार को छोड़ के बाकी दिन हमारा और आपका साथ रहता है, और इसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ कवाली पेश करते हैं। और अब ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: 9-8-8-24।
1: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Sheffield's very own community radio station,
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Sai Mudassir.
10: This is Rahul.
11: My name is Rizwan Ishraq.
12: My name is Asham.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.

तमाम ही कलाम बड़े खूबसूरत होते हैं और आज की ये महफिल, और ये महफिल हर रोज होती है हमारी, और हमारा और आपका साथ 2 घंटे होता है। 2 घंटे में आपके लिए मुख्तलिफ कलाम आपके लिए पेश करते हैं, और अभी भी पहला कलाम अभी आपने सुना और आपको एक और कलाम खूबसूरत सुनाते हैं।

Linking communities. This is Link FM 96.7 FM.

0: जे तू वापस जाना चाहना तो जरूर जा, मैं तेनू रोकांगा नहीं। पर पुत्रा एक गल मैं तेनू बड़े माण नाल कहना चाहना, तू जो कुछ इस पाप वास्ते कीता, जो कुछ इन्हें इस शख्स वास्ते कीता, दुनिया का होर कोई पुत्र नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
1: हुण नहीं बापू जी, आ पासपोर्ट भी तुहाडा ते मैं भी तुहाडा, मैं की लैन जाना उत्थे, मैं नहीं जाना।

जी हाँ, बड़ा प्यारा गीत सी। यह देख लो माँ बाप किन्ने सैक्रीफाइस करते हैं, कुरबानियां देंदे ने ते अपने बच्चों की जिहड़ी कहिंदे ने कि लाइफ है, जिंदगी है, वह चंगी बन जाए, उन्होंने सफलता मिले, तो जो उन्होंने जिन्ना कमाया किया उस तो चंगी जिंदगी बच्चे जीवन, तो उन्होंने ज़्यादा आराम आराम मिले, तो कामयाबियां मिलन, तो उस करके माँ बाप जिहड़े हुंदे ने कोई भी कुरबानी देने नूं तैयार हुंदे ने। रिहाना बीबी जी, तुसी सानू फेसबुक ते फॉलो कर रहे हो, गुड इवनिंग जी, वालेकुम असलाम जी। तो जे कोई गीत सुनना हो तो जरूर सानू दसना, पूरी कोशिश करांगे तुहाडी पसंद दा गीत लभ के लगाउण नूं। अगला गीत है जिहड़ा इसते खास करके फरमाइश कीती है सानू सुरिंदर कौर जी ने, ते चलो आपां उनां दी पसंद दा गीत सुनदे हां, की कहंदे ने इह।

जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाय नानी, तुसी सुन रहे हो लिंक FM 96.7। ते इस वेले तुसी सुन रहे हो जिहड़ी आवाज़ है सरबजीत दी है, ते पेश कर रही है पंजाबी विरसा प्रोग्राम, अपनी माँ बोली दा प्रोग्राम, अपने विरसे दा प्रोग्राम। मेरा तुहाडा साथ रहेगा पूरे 9 बजे तक। जेकर तुसी अपनी फरमाइश दा कोई गीत सुनना होवे तां नंबर है 01142618181, ते व्हाट्सएप दा नंबर है 07939849339। ते जेकर तुसी कोई पोएट्री कविता शेरो शायरी करनी होवे तां भी तुसी आ सकदे हो, नंबर ओही है। जे कोई रेसिपी दसनी होवे तां भी जी आया नूं। अब्दुल जी, की गल हुई, तुसी इन्ने कॉफी दे कप भेजे सारिया वास्ते, तो बाद विच फिर ओह तुसी लै गए, कल्लिया ने पी लिया कि की कर दिता उन्हां नूं, डोल तां नहीं दित्ते। ते जी हाँ, मैं हमेशा तुहानूं, हमेशा तो नहीं, मेरी कोशिश हुंदी है हर प्रोग्राम विच कुछ ना कुछ बुझारत पुछा, क्योंकि सुनने वाले भी पसंद करते ने कि कोई बुझारत पुछा। अज मैं बुझारत नहीं कोई लैके आई, मैं अज सोचा कि चलो आपां अजकल कह लो कि हुण नवीं पीढ़ी है, सारे इत्थे भी है, अपने देशां विच भी ने, ते ज़्यादातर आपां जिहड़े महीने है ना अंग्रेजी दे महीने, उहनां नूं ही आपां वरतदे हाँ, ते जिहड़े अपने देसी महीने ने उहनां नूं तां आपां भुल्लदे जांदे हाँ। अज मैं तुहाडे कोलों यही पुछना है कि तुसी भी देसी महीनिया का मैनू नाम दसो, जिन्ने भी आउंदे ने तुहानू तुसी दसो, जिहड़े कोई यंग ने हाले उन्हां नूं नहीं पता, वह अपने तुसी अम्मी अबू कोलों पुछ लो, नाना नानी कोलों, दादे दादी कोलों, ते मैनू मैनू बहुत चंगा लगेगा जे तुसी चाहे एक महीने का नाम दस दो, दोवां दा दस दो, जे बारह दे बारह दस दो, फिर तो बस क्या गल्लां जी, फिर तो सरबजीत ने इत्थे देखियो किन्नी खुश होई जाना है ना। तो चलो आपां हुण अगला गीत जिहड़ा आ उह आपां फरमाइश कीती है तारक साहब जी ने, ते चलो सुनते हाँ कि तारक साहब जी कहड़ा गीत सुनना चाहते हैं।

Duk değil!

0: הוא היה הכי חייס.
1: हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं, अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलें।
2: खोल दो।

0: से लोग जो हमारे शहर की जीनत रौनक, वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि मैं समझता हूँ कि कुछ कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत पैगाम जाता है हमारी अपनी पूरी कौम के लिए कि आया हम भी एक रोल मॉडल बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। वो वक़्त ख़त्म हो जाएगा जिस वक्त हमने अपना ज़िंदगी का या सफ़र या जितना आपके साल महीने बरस लिखे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, ख़त्म हो गए। मैं भी नहीं रहूँगा या जो पहले थे वो भी नहीं रहे, तो आइंदा आने वाले भी नस्लें भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन रह जाएगी जो पीछे जो आपके अमाल होंगे, जो आपने काम किया, जो आपका इखलाक होगा, जो मोहब्बत होगी, वो लोगों में बसी रहेगी। अगर अच्छी है तो कुछ अरसे तक लोग याद रखेंगे, अगर अमाल हैं तो अल्लाह ताला अगर कबूल फरमाए इसका सिला अगले जहान में मिलेगा। लेकिन आज जो हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके मतलब मैं अगर बातें करना शुरू कर दूँ तो हो सकता है प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, लेकिन इनके मतलब वो बायोग्राफी में मुकम्मल करने में मुश्किल होगी। लेकिन हर एक के दिल अज़ीज़ और बहुत ही चाहने वाले, प्यार करने वाले हमारे साथी और शेफील्ड की शान मेरी मुराद आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सैयद फियाज़ हुसैन शाह नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है। एज़ ऑलवेज़ हम हियर ऑन वेंसडे आफ्टरनून बिटवीन 12 o'clock एंड 2 o'clock विद योर प्रोग्राम शाइनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार्स विच सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स टुगेदर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर माशाल्लाह आर डूइंग रियली रियली वेल, एक्सट्रीमली वेल, एंड दोज आर पीपल हु एस्पायर टू। एंड टुडे वी हैव नन अदर देन सैयद फियाज़ हुसैन साहब जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनका सबसे ज़्यादा अगर शेफील्ड में या किर्द में नाम में याद किया है वो शाह जी के नाम से लोग इनको मुखातिब होते हैं इनके साथ। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती अनिस इज हॉनर एंड प्रिविलेज शाह साहब टू हैव यू इन आवर स्टूडियो। मैं आई वेलकम योरसेल्फ शाह साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इस लिंक एफ स्टूडियो में जिसमें आपके इस पूरे इदारे के भी आप एक हिस्सा हैं, उसी के हवाले से आज आपके अपने स्टूडियो में आपको मैं वेलकम करता हूँ।
1: जी सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। और आपने इतनी तारीफ़ें कर दी हैं, तारीफ़ फ़कत खुदाबंदे आलम की होती है और आप जैसी शख्सियात की, कि मेरा ख़्याल है कि मोहम्मद अली भाई जो आपके साथ मरासम हैं वो थ्रू आउट चलते आ रहे हैं और आपके सामने तो हमारी हस्ती और हसीयत नहीं है, आप एक ख़ुद बहुत बड़ी शख्सियत हैं और इतने अल्फाज में तारुफ़ करवाना आपने करवा दिया। खुदा बंदे आलम अगर हम में ये खूबियाँ पाई जाती हैं तो खुदा हमें इन पर कायम रखे, अगर नहीं पाई जाती और जितनी आपने तारीफ़ कर दी हैं तो खुदा हमें उनके काबिल बनाए और हमें ऐसा ही कर दे जैसा आप सोचते हैं। तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की है और खुदा बंदे आलम का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसी शख्सियात ने और बहुत से लोगों ने ऐसे मकाम मौाक़े फ़राहम किए कि हम उनकी खिदमत कर सकें। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जितनी बातें आपने की हैं या वो लिख दी हैं, मैं परेशान हो रहा था कि भाई ने इतना कुछ लिख दिया है कि मैं उसके ऊपर क्या क्या हम बात करेंगे। मैं असल में सबका खिदमत गुजार हूँ, सबका खादिम हूँ और ख़ुसूसन सादात के साथ ताल्लुक़ और सादात सैयद होने के नाते से फ़र्ज़ बनता है कि आले रसूल से अगर हम मोहब्बत करते हैं और उनसे हमारी रिश्तेदारी और लोग उन्हीं की वजह से हमें इज़्ज़त देते हैं तो फिर हम उनकी सीरत पर अमल करते हुए लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से चलें। तो यही काविश जो है इस काबिल बना देती है कि आप जैसी शख्सियात फिर हमारी तारीफ़ करने लगती हैं और ये हमारी तारीफ़ नहीं है, चूँकि हम ख़ानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद से हैं तो इसलिए ये तारीफ़ असल में गोज़ टू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम किसी काबिल नहीं हैं, हमें तो अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है, जैसे आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज इंट्रो में इतना तारफ़ करवा दिया कि जो हमारी ज़िंदगी है यही हमारी ज़िंदगी है और इसी में हमें कुछ काम करने हैं और हमारे आमाल ही रह जाएंगे, ये हमारी बातें बातें कोई नहीं है, जो हम अमल करते हैं उसका तज़करा चलेगा। जैसे कि आज ये प्रोग्राम है, ये नशरियात हैं और ये नशरियात यहाँ आज हो रही हैं तो अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में नशरियात का पहले ज़िक्र कर दिया है कि अलम नशरा, हम नशर कर देंगे तो क़्यामत में भी नशर होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये क़्यामत तक चलेंगी और धूप और छांव असर रखती है और ये बातें और ये प्रोग्राम और आजकल तो इंटरनेट वगैरह का और फेसबुक सोशल मीडिया ने यानी कि हमारी चीज़ों को महफूज कर लिया है।

0: पर अगर कोई भी उससे सबक हासिल करना चाहे, सीखना चाहे, तो बहुत आसान है। लेकिन मैं इस सोशल मीडिया के हवाले से पहली जो बात करना चाहूँगा अपने तमाम सुनने वालों को, वो ये है कि देखें, हमें बहुत अच्छी बातें मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं, और हर रोज़ आप बेहतरीन तरीके से सुनते हैं और जहाँ भी जाएँ अच्छी बातें मिलती हैं। लेकिन मोहतरम बात यह है कि बात फ़कत वही अच्छी है जो आपके अमल में आ जाए। जो सुनी और इधर से चली गई वो कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि इसलिए उसकी मिसाल बहुत बड़ी दूंगा कि अगर हमारे घर में एक नहीं पाँच पाँच छः छः कुरान मजीद पढ़े हैं तो उसका असर हम पे नहीं होता जब तक हम उनको गौर से पढ़ेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं और उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ननूरी है, नारी। तो इसलिए हमारे जो आमाल हैं वो बेहतरीन एक ज़रिया हैं। तो अब आपने इतना तारुफ कराया तो मैं इसके ऊपर अपनी यानी कि इज्जो इनकसारी साबित कर सकता हूँ कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि लोगों के काम आ सकूँ जब तक जिंदा हूँ। तो यही
1: शेख साहब, मैंने यहाँ शेफील्ड में अरसा दराज हो गया है रहते हुए, बेशुमार लोग आए तो बेशुमार लोग गए, उसमें अपना भी हिस्सा डालते रहे हैं, लेकिन आम की कोई ऐसा इखलाक, ऐसी एक मोहब्बत है जिसमें लोग एक दफ़ा आपके पास करीब हो जाते हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ रहें, मुखलस होते हैं, जो बात करते हैं, जो मुनासिब समझते हैं वो बात करते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने मज़हब और दीन के लिए आप अपनी तरफ से ऐसे अल्फाज अदा करते हैं कि जिसमें एक ऐसा फीलिंग पैदा हो जाए कि जिसमें हम सब इकट्ठे हैं, जिसमें अपने मज़हब का तहफ़ करना वो ज़रूरी होता है, दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होती है, ये सारी चीज़ें आप पाई पाएंगे यकीनन। ये आपके वालिद साहब से ये चीज़ मुंतकिल हुई होगी।
0: ये जो आपने जुमला बोला, वालिद साहब, वालदा, वालदैन इंसान का पहला असासा होते हैं
1: बेशक,
0: और बंदे अच्छा काम करें तो लोग पंजाबी में हमारे कहते हैं जी लख सलाम ने इसते माँ प्यो नू,
1: माँ प्यो नू।
0: तो यानी कि अगर कोई बंदा बुरा करे ना तो वो माँ बाप की तरफ बुराई जाती है। तो यकीन करें कि इसीलिए औलाद को एक बेहतरीन जो होता है ना कि सदका जारिया में सबसे पहले औलाद को समझा जाता है, क्योंकि औलाद जो है माँ बाप के लिए हमेशा के लिए जो भी काम करती है तो उनका जो सवाब है माँ बाप को जाता है, क्योंकि तरबियत उन्होंने की हुई है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कहा है कि भाई जो भी अच्छा काम करते हो मेरी तरफ से है। इसकी वजह क्या है कि अच्छाई का हुक्म ही खुदा की तरफ से आया है, तो जो भी अच्छा करेंगे उसी का हुक्म है। इसी तरीके से माँ बाप जो होते हैं ना वो तो पहली एक सीढ़ी है इंसान की, और आपने उनका तज़करा किया तो खुदावंद आलम हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जितने भी साहिबान सुन रहे हैं, माँ बाप अगर आपके ज़िंदा हैं तो यकीन कीजिएगा कि आपके पास खुदा को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया मौजूद है। माँ बाप को मुस्करा के देखना चाहिए, माँ बाप को उफ़ कहने का हक हासिल नहीं है। जो भी करें माँ बाप सही हैं, माँ बाप की इज़्ज़त करें, तकरीम करें, यही अल्लाह का हुक्म है, यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और यही हमारे लिए इज़्ज़त है। और मैं एक और जुमला बोल देता हूँ कि अगर किसी इंसान को देखना हो कि जो इज़्ज़त मिली है किसी इंसान को, कायनात के किसी इंसान को, तो जो इज़्ज़त उसे मिली है ना, पहली इज़्ज़त उसे घर से माँ बाप देते हैं। अगर उसके माँ बाप ने उसको इज़्ज़त दे दी है ना तो ज़माना इज़्ज़त देगा, भले ज़माना किसी को जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दे दे, अगर माँ बाप उस पर राज़ी नहीं है ना तो ना अल्लाह राज़ी है ना उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो सकता है। तो माँ बाप का राज़ी रखना पहले है।
1: माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जुमला आपने अदा किया। यकीनन मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो साथी सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर उनके वालदैन आज मौजूद हैं तो ये एक वो टर्निंग पॉइंट रख लें कि आज से जो पहले जो हुआ, जैसे भी हुआ, जैसे भी करते रहे, लेकिन यहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी का नहीं एक नया रुख पैदा करूँगा, ताकि यकीनन अगर माँ बाप खुश हैं तो सारा जहान खुश है, हर कदम आपको कामयाबियाँ चूमेंगी।
0: और अगर किसी के माँ बाप चले गए इस दुनिया से तो उन्हें जाना चाहिए उनकी कब्र पे। जो भी देख, अगर मैं अपने वालदैन की कब्र पे जाता हूँ तो कोई भी जब भी मुझे कोई देखेगा, दुआ मेरी अल्लाह कबूल करे ना करे, जो भी है खुदा तो जानता है ना, लेकिन लोग जो देखेंगे वो कहेंगे कि ये माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला आदमी, आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाएगा। माँ बाप की कब्र पर अगर आप जाके दुआ करते हैं, साफ़ करते हैं, तो लोगों को महसूस होगा कि इस कब्र का कोई वारिस ज़िंदा है। यकीन करें कि قرآن مجید میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ اے رسول تم کافروں یا منافقوں کی قبروں پہ نہ جا کے کھڑے ہونا نہ دعا کرنا. اس کا مقصد ہے کہ قبر پہ جا کے کھڑے ہونے سے بھی کوئی اثر ہوتا ہے,
1: جی جی,
0: دعا کرنے سے بھی اثر ہوتا ہے. تو ماں باپ کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ آپ ان کے وارث ہیں, اور اگر کس کے کوئی اچھے ماں باپ ہوتے ہیں تو اسی کو یاد کیا جاتا ہے. اگر میں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاؤں گا, نہیں یاد کروں گا, تو اس کا مقصد ہے میرے ماں باپ اچھے ہی نہیں تھے. تو کوئی تو کہتے ہیں چلو بس چھوڑو جی ختم. تو مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر جا کے دعا کرنی چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے, ان کے لیے دعا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا ایک اور حکم اسی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں, بڑی خوبصورت بات ہو جائے گی کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں اپنے اعمال تو معاف کر دوں گا انسان کو, لیکن اگر تم نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو وہ نہیں معاف کروں گا. یعنی کہ کتنا خوبصورت
1: حقوق العباد ہے,
0: حقوق العباد کہا گیا تذکرہ. اب مثال میرے والدین تھے تو ان کے ساتھ کئی دفعہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اب والدین تو چلے گئے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ختم رکھ لینا چاہیے, لوگوں کو بلا کے دعوت دینی چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. جب کوئی انسان دعا کرے گا میرے والدین کے لیے تو اب وہ معافی کر دے گا نا, اس کے لیے معافی کی دعا مانگ رہا ہے نا, تو اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو نہیں معاف کروں گا, جب تک وہ نہیں معاف کرے گا. تو وہ معاشرے کے لوگ جو ہیں جب سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے, تو اللہ کہتا ہے تم نے معاف کر دیا, میں تو کر ہی دوں گا. تو بس یہ تو ایک بہترین سبب بن جاتا ہے ماں باپ کو یاد کرنا, ختم دلوانا, قبر پہ جانا. اگر گزر گئے تو ان کو یاد کرنا چاہیے, اور اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں کوئی کمی کسر
1: نہیں
0: چھوڑنی چاہیے, بلکہ اف تک کہنے کا حکم ہے اللہ کا, نہیں
1: کہنا. شاہ صاحب, آپ پاکستان, آپ کا کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟
0: پاکستان میرا تعلق, پہلے تو ہمارا پنجاب پاکستان میرا ہے, پنجاب میرا ہے, پورا پاکستان ہی میرا ہے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان پورا ہمارا ملک ہے. لیکن چونکہ ایک انتظامی نظام میں جو ڈسٹرکٹ بانٹے گئے یا صوبے بانٹے گئے, صوبہ پنجاب ہے, ضلع پہلے جھنگ ہوا کرتا تھا, اب ضلع چنیوٹ ہو گیا ہے. چنیوٹ کے ساتھ ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے رجوا سادات, اور اس کے عقب میں بھی کوٹا مدیار اور سارے کافی سارے گاؤں جتنے ہیں, کوٹا مدیار ہو گیا, ولارا ہو گیا, متھروما, یہ سارے جتنے بھی ہیں, کوٹا امیر شاہ ربوے تک, یعنی کہ سارے ہمارے اپنے ہی سب رشتے دار, برادری, خاندان کے زمینیں, ملکیت, تو سارا میں تو وہاں خادم ہوں سب کا وہاں بھی.
1: ماشاءاللہ. چنیوٹ,
0: چنیوٹ شہر جہاں لکڑی کا سامان کی وجہ سے مشہور ہے,
1: چنیوٹ
0: بسوں کی باڑیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے. آج کل تو خیر وہ نواز شریف وغیرہ نے, شہباز شریف وغیرہ نے سونے اور چاندی کی وجہ سے اسے مشہور کر رکھا ہے کہ وہاں زمین میں بہت سونا ہے تو وہ نکالنا ہے. تو اللہ ہی خیر,
1: اچھی بات ہے, کیوں نہیں,
0: بس کچھ فائدہ ہوتا ہے ملکی طور پہ, لیکن عوامی اور لوگوں کو نقصانات بھی ہوتے ہیں. ہر چیز میں فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں.
1: شاہ صاحب, آپ کی اپنی فیملی, آپ کے بہن بھائی؟
0: جی, ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی کہ میرے والد صاحب سید باقر علی شاہ اور ان کے چار بیٹے بڑے جو تھے, سید اظہر حسن, ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے, اور سید ضمیر الحسن کا 2015 میں انتقال ہوا تھا میرے, یعنی کہ وہ سیکنڈ تھے, تیسرے نمبر پہ میرا ہوں, اور چوتھے نمبر پہ اب کے ہم نام
1: سے محمد علی شاہ
0: وہ یہیں پر ہی ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جب یہاں آیا ہوں تو یہاں دو میری بہنیں ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے.
1: بہنیں پاکستان میں,
0: بہنیں پاکستان میں, صرف محمد علی شاہ اور میں یہاں ہوتے ہیں, باقی سب پاکستان میں ہیں ہمارا خاندان. اللہ کا شکر ہے کہ ہم, ایک میرا کزن سید آصف شاہ صاحب, وہ اور میں اکٹھے نکلے تھے اور یہاں پہنچے. تو اس کے بعد اب آہستہ آہستہ خاندان کے کافی لوگ جمع ہو رہے ہیں, اور میری بڑی کوشش ہے کہ ہم یہاں پر ایک رجوع بنا دیں,
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
0: اور یہاں پر ایک چنیوٹ.
1: شاہ صاحب, آپ یہاں ڈائریکٹلی برطانیہ آئے یا
0: نہیں؟ میں پہلے جرمنی میں آیا تھا جی, آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جرمنی میں 12.5 سال میں رہا ہوں, اور پھر میری شادی یہاں ہو گئی تھی, اور پھر شادی تو آپ کو پتا ہے کہ بیویاں کہیں انسان کے, انسان کو کہتے ہیں کہ بھی آ جاؤ, تو وہ بھی تھا, لیکن بچوں کی تعلیم کے لیے. جو اچھی بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ جرمنی سے زیادہ بہترین ہماری بچیوں کے لیے, ہمارے دین اسلام کا جو ایک نظام ہے وہ برطانیہ میں ایک بہترین ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور وہ جو ہم سے پہلے 2-3 ڈیکڈز پہلے آئے تھے لوگ, تو ان لوگوں نے ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک نظام جاری, حلال کھانوں کا, اپنے لباس کا, اپنی مساجد کا, اپنے دین و اسلام و قرآن کا جو پرچار کیا, تو آج ہمیں اس پہ یعنی کہ خوشی ہوتی ہے کہ برطانیہ میں جتنی آزادی ہے ممکن, اتنی تو پاکستان میں دین کی بندے نہیں کرتے جتنی یہاں پر دین اور اسلام کی بات ہوتی ہے,
1: بہت زیادہ آزادی ہے,
0: تو اس لیے
1: ہر چیز کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے.
0: پھر جرمنی سے یہاں موو ہوا, میری بچیوں کو جو جب داخل کرنا تھا اسکول میں, तो ये एक मेरा यानी कि सोच थी, फैसला था कि बच्चे जो हैं मेरे यूके में ही पढ़ेंगे, इंग्लैंड में ही, क्योंकि वहाँ निज़ाम अच्छा है सब कुछ।
1: आपके ससुर
0: जी, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, इफ्तिखार शाह साहब एक शेफील्ड की बहुत ही, वो भी एक खुश अखलाक, खुश तबे, खुश मिजाज, और बड़ी, आपको तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो बहरहाल मेरे लिए तो बड़े शफीक थे। हमारे ऑफिस में जब आते थे ना तो उनका पहला लफ्ज़ होता था, अब इससे ज़्यादा मेरे पास कोई जुमला नहीं है उनकी तारीफ में, कि वो आते थे तो कहते थे कि बस अब अंदर जाके आप सो जाओ, बस सो जाओ, आराम करो, काम थोड़ा किया करो। तो वो ये यानी कि उस वक्त भी यानी कि उनको ये होता था कि आराम करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे शफीक आदमी थे। मैं आ गया हूँ, मैं काम करूँगा और अब बैठो सो जाओ आराम करो, तो
1: माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हुआ करते थे
0: जी। हाँ, वो हमेशा खुश तबे और लोगों के साथ बड़ा तंज़ो मिज़ा, अखलाक, प्यार, मोहब्बत। और फिर जो मैं जब उनकी डेथ हुई तो पाकिस्तान में था, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से उनकी तदफीन में हिस्सा लिया, वो सारी पिक्चर्स, तस्वीरें, मूवी वहाँ पर आ रही थी, पाकिस्तान मुझे लाइव दिखा रहे थे, मैं उन तमाम लोगों का अब भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे तमाम दोस्तों का, तमाम शेफील्ड के लोगों का, कि जिन्होंने उस वक्त यानी कि एक खूबसूरत आसन तरीके से, यानी कि हमारी अदम मौजूदगी में भी एक हमारे फ्रीजे को आसन तरीके से सर अंजाम दिया, मैं उनका मशकूर हूँ। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान में मेरे वाले साहब फौत हुए, तो मैं नहीं पहुँच सका था वहाँ, उस वक्त कागजात का कोई मसला था, वीकेंड था, अप्रैल की छुट्टियां थी, वीज़ा नहीं, तो उस वक़्त भी जिन लोगों ने वहाँ पर हमारे वालदैन के साथ तदफीन में हिस्सा लिया या जो भी किया, मदलिशा वहीं थे उस वक़्त, तो उनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। हम एक दूसरे के लिए बेसिकली कि मुआशरे का नाम ही यही है ना, कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वही हमें भी करनी चाहिए, और सब लोग हमारे मददगार और मुआवन हैं, आपकी तरह आप भी तो उन्हीं में शामिल हैं।
1: आंटी कैसे हैं
0: जी? अल्लाह का शुक्र है, आंटी खैरियत से हैं। अगर उनको, वैसे वो रेडियो का प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हाँ हो सकता है अगर उन्होंने सुन लिया तो वो फ़ोन भी कर दें, क्योंकि अक्सर वो मुझे पता है कि वो रेडियो का प्रोग्राम सुनते हैं, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वो से।
1: उनकी बड़ी खिदमत है यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, मुझे याद है कि जो सिलाई की यहाँ क्लासेस हुआ करती थी।
0: हाँ, वो
1: पूरे यहाँ से वो सेशन उस वक्त रन गए, ये 20-25 बरस की बात है।
0: हाँ बिल्कुल, वो शहर की मोस्टली ख्वातीन, ज़्यादातर ख्वातीन उनकी शागिर्द हैं, इसीलिए उनकी माशाल्लाह काफ़ी पीआर और रिस्पेक्ट है। खुदा उनको खुश रखे, सलामत रखे, सेहतमंद रखे।
1: आपके बच्चे?
0: जी, मेरे बच्चे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है, 1 बेटी की शादी कर दी है, 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक जो भी प्रोग्राम बना, और 1 मेरा साहबजादा है सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब।
1: अब्बास शाह साहब
0: जी जी, तो वो अभी घर में थे, अकेले थे, तो उन्होंने मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे कि भाई पापा उठे हैं, तो वही, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो फौरन निकलूंगा, तो बाद में, तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, फरमा बरदार होने चाहिए। देखें जी, तालीम जितनी भी है, तालीम बच्चों को अपने फ्यूचर में काम आती है।
1: जी जी जी,
0: माँ बाप को उनकी फकत और फकत फरमाबरदारी, ताबेदारी अच्छी लगती है। बच्चा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कुछ कहते हैं ना कि हमारे बच्चे मास्टर करनी चाहिए, उनको पीएचडी करनी चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बच्चे अगर आपके फरमाबरदार हैं तो इससे बड़ी खुदा की नेमत है ही कोई नहीं। बच्चे ताबेदार होने चाहिए, फरमाबरदार होने चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि माँ बाप की इज़्ज़त करें, पहला भी हमारा यही यानी कि जो सेगमेंट में पहले हमने कहा है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट अल्लाह ने वाजिब करार दी है। अगर आपकी औलाद आपके साथ शाना बशाना चल रही है, आपको कॉपी करती कॉपी है, औलाद कॉपी करती है, 100% करती है
1: जी,
0: लेकिन ये हमारी गलतियाँ होती हैं कि जब हम उनके सामने गलत बयानी करते हैं, झूठ या गलत कोई ऐसा काम करते हैं, तो बच्चे सीख लेते हैं। अगर हम अपने आप को दुरुस्त कर लें तो हमारे बच्चे भी राह रास्त पर रहेंगे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपने बच्चों पे फ़ख्र भी है, खुशी भी है, और मैं मुतमिन भी हूँ।
1: माशाल्लाह, छोटा क्या कर रहा है अपना?
0: मोहम्मद अब्बास फिजिक्स में इस वक्त डिग्री कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत
0: तो यूनिवर्सिटी में है वो।
1: माशाल्लाह, ताला जी कामयाबियाँ अता फरमाए। शाह साहब माशाल्लाह, बच्चों के मतलब बात की, आंटी की बात की,
0: वालदैन की बात की,
1: उनकी बात की, क्योंकि ये एक पिक्चर सी फॉर्म होती है।
0: चूँकि आप मेरे वाले साहब को नहीं मिले, अगर वो मिले होते ना तो एक वाक्या सुना देता हूँ।
1: जी जी जी,
0: छोटा था वो, मैं कॉलेज पढ़ता था फैसलाबाद, हो तो हॉस्टल में रहता था, तो अबू वहाँ मिलने आए, तो मैं क्लास में था, तो वो कमरे में आए तो दोस्तों ने उन्हें बिठाया, तो वो लड़कों ने पूछा कि भाई शाह साहब क्या आपके वालिद हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो शाह साहब कहाँ रहते हैं? तो अब्बू से जब उन्होंने पूछा ना, तो उन्होंने कहा उन्होंने बताया नहीं कभी।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा मैं तो था ही नहीं। अब वो जब मैं आया ना, तो अब्बू ने कहा कि इनको तुमने नहीं बताया कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने कहा क्या बताने की ज़रूरत है भाई, चलें दोस्त हैं ना, इनको ज़रूरी तो नहीं होता। तो अब्बू ने मेरे आने से पहले उनको दावत दे दी, आप आइएगा, मैं आपको शिकार पे ले जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा,
0: हाँ, तो अगर आप भी उनके मिले होते ना, तो वो आपको बगैर तकल्लुफ से। तो ये एक देखें, ये लेगेसी होती है, ये ख़ानदान की एक विरासत होती है, ये अखलाकियात, प्यार, मोहब्बत, खिदमत, ताबेदारी, फरमाबरदारी, इनकसारी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वालदैन से ही मिलती हैं यकीनन, जैसे आपने शुरू में कहा।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब, आप में अंदर एक बड़ा जज्बा है कौम की खिदमत करने का, 24/7 आप अवेलेबल होते हैं, जिस वक्त कोई टेलीफोन करता है, अगर आप सोए भी हों तो टेलीफोन उठा लेते हैं, है कि नहीं? एक बड़ी ये आम
0: मशहूर बात है
1: और मैं समझता हूँ ये बात हर एक पंजीज नहीं पाई जाती।
0: मैं इसलिए उठा लेता हूँ मोहम्मद अली भाई के, जब कब्र में सो जाऊँगा ना, तो फिर ना किसी ने बुलाना है ना किसी ने आना है, तो जब तक जिंदा हूँ ना, जो कोई बुलाए ना, ये एहसान होता है कि कोई आपको याद कर रहा है।
1: जी जी,
0: देखें किसी इंसान ने अगर आपको याद किया है किसी मसले के लिए या किसी बात के लिए, तो खुदावंद आलम ने आपको उसके जहन में डाला, चुना कि भाई वो कोई काम करवा। और अगर हमारे काम तो हो जाना होता है, दुनिया का हर काम हो जाना होता है,
1: जी जी,
0: ये नहीं है कि फयाशा ने करना है या आपने करना है, ये तो एक ऐसा सेरा होता है कि हम सर आगे करके ले लेते हैं कि जी हमने करवा दिया। काम तो हर बंदे का दुनिया में चलते, हम दुनिया चली गई, आपने खुद फरमाया इतने चले गए तो काम तो हो रहे हैं ना, ये सब सिलसिले चलते रहेंगे। तो अगर कोई हमारे वसीले से हो जाए, तो शायद कोई हमें याद ही रख ले, कोई दुआ ही दे दे, शायद उसी की दुआ की वजह से खुदा बंदे आलम हम पर रहम करम करे और मजीद। और यही जो दुआएँ मिलती हैं, ये जो हमारी गलतियाँ सुधरती हैं, वो दुआओं की वजह से, अप्रिसिएशन की वजह से हम बुरे कामों से दूर रहते हैं, लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से हम नेकी की तरफ जाते हैं, और यही जब नेकी की तरफ जाते हैं तो मजीद करते हैं, तो इसका मकसद है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। जब अल्लाह कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे, खुश होगे, तो मैं मजीद दूंगा, तो अल्लाह फिर मजीद हमें यानी कि वो काम भी देता है कि और ये भी करो, अब ये भी करो, अब ये भी करो, तो हम इंशाल्लाह
1: इज्जत भी देता है, किसी चीज में कमी नहीं आती।
0: हाँ जी बिल्कुल, ये तो लोगों का एहसान होता है। देखिए ना, वो एक आदमी से आप कर्जा लेते हैं, अगर कर्जा लिया, कर्जा उसने अपना ले लेना है, वापस ले लेना है, लेकिन सारी ज़िंदगी आप उसके मशकूर रहेंगे, ममनून रहेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसके यह कितना खूबसूरत निज़ाम है अल्लाह का, हालांकि इन चीज़ों को हम सोचते नहीं हैं। कर्जा उसने अपना वापस ले लिया, लेकिन सारी ज़िंदगी आपके दिल में उसने घर बना लिया, तो ये कितनी बात है,
1: मुश्किल वक्त में काम आया,
0: वक्त में काम आ गया। तो इस तरीके से किसी के काम आना चाहिए, अगर कोई बंदा आता है तो हमारे यहाँ ये पहले ही बात आ जाती है कि यार ये क्यों मैं इसका काम करूँ, मुझे ज़रूरत है, ये है वो है। जब अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी राह में खर्चोगे तो मैं 10 गुना दूंगा, तो देखो तो देखो ना,
1: बेशक
0: तो यकीन करो अल्लाह देगा।
1: शाह साहब, आपका बहुत सारे शोबों के साथ आपका ताल्लुक है, सबसे पहले जो जिस चीज़ से आप ज़्यादा आप इस वक्त पहचाने जानते हैं, वो है कि एज अ चेयरपर्सन ऑफ अलामा इकबाल संडे लीग है। ये कितना अर्सा हुआ है मज़हब वजूद में आए हुए?
0: ये अलामा इकबाल संडे क्रिकेट लीग का आपने जो ज़िक्र किया है, आज माशाल्लाह हमारे 20 साल मुकम्मल हो गए हैं इसको। 2006 में प्रॉपरली तौर पर इसको शुरू किया गया, और मुख्तसर से यानी कि ये आप लोग ही उस वक्त बैठे थे, ये वही यानी कि मेन लोग तो मेरे सामने ही बैठे हैं, हम सब ने मिल के शुरू किया। इब्रार साहब का नाम लेना ज़रूरी है जो उस मीटिंग में मौजूद थे, जायद सलीम्स का नाम लेना ज़रूरी है, जुल्फ़कार भाई मौजूद थे, ज़ीशान शाह साहब मौजूद थे जो उस वक्त मीटिंग में हम मौजूद थे, तो उनका नाम लेना, वो सारे के सारे इस पौधे को लगाने में पेश थे। और मेरे ऊपर इन्होंने, चूंकि मैं नालायक था तो यार नहीं काम वेला आदमी था, तो उन्होंने कहा यार इनको चेयरमैन बना देते हैं तो ये करते रहेंगे, को खेलना तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो चलो उनकी मेहरबानी। तो मैंने भी मेहनत की, लेकिन मेहनत उन लोगों की ज़्यादा है, मैं तो दूसरों को क्रेडिट देता हूँ कि वो साबित कदम रहे, और आज 20 साल हो गए हैं, जायद सलीम साहब हों, इब्रार साहब हों, आप हैं, मैं हूँ, हम 4 आदमी तो कम से कम ऐसे मौजूद हैं कि जिन्होंने 20 साल में अपना साथ नहीं छोड़ा, और उसी की वजह से ये अलामा इकबाल संडे क्रिकेट लीग जो है एक माशाल्लाह तनावर दरख्त बन चुकी है, और उसके ज़ेरे साया कितने ही पौधे यानी कि फल फूल रहे हैं। अगर देखा जाए तो शहर के अंदर क्रिकेट खेलने वाले जितने भी कोई क्लब کلب ہیں، کوئی میچز ہیں، کوئی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، کوئی لیگ چلا رہا ہے، کوئی مثال کے طور پہ یا انڈور کر رہا ہے، جو بھی کرکٹ کے ساتھ پاکستانی لوگ ہیں.
1: ابھی ہمارے ساتھ میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہ صاحب. کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی ملیں گے اس بریک کے بعد، پر یہاں سے سلسلہ انشاءاللہ جوڑتے ہیں.
2: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
3: Nayab's Takeaway in Sheffield
4: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
3: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
4: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
3: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
5: Accident ho gaya rapa rapa.
6: Je hoegi accident fikar na karo. Fatta fat the claim team ki phone karo. Agar tum taxi chalane ho, tum private car chalane ho, ya fir koi kirai ni gaddi na accident ho gaya hai, te the claim team tusani khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Dadram te Girdonwale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan ki maiya karne. The claim team apne vaade ne mutabak 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unna phone number hai 0330571009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
7: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
8: And the winner is...
9: And the winner is...
10: And the winner is...
8: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

समय ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हुए. अभी आपने थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुना, ज़रा थोड़ा दिलचस्प गुफ्तगू यहाँ चल रही थी. लीग के मतलब तो बेशुमार बातें हमने की हैं. आपने भी अगर हमारे साथ शामिल होना है तो ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा 0114-261-8181. शाह साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 20 साल किसी लीग को चलाना ये खाला जी का घर नहीं है. इसकी जो कमिटमेंट होती है, टाइमिंग होती है, पैशन होता है, जज्बा होता है, ये 24 आवर अलर्ट वाली बात होती है. लेकिन एक तवील अरसा एक चीज़ चलाना, साथियों को चलाना, ये बहुत ही बड़ा आसान काम नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि जिस टीम का कैप्टन अच्छा हो तो टीम अच्छी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहती है. सो वेल डन. आज मैं एल एस शेफील्ड की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने शेफील्ड को एक नया लैंडस्केप दिया. यहाँ पहले भी क्रिकेट खेलते थे, पहले भी चलते थे. आपकी इंतखाब किया गया जिस वक्त ये टीम बनी थी, जिस वक्त ये मैनेजमेंट बनी थी, चंद साथी उस वक्त बैठे थे कि हम ये शुरू करना चाहते हैं लीग. लेकिन आपको उस दिन ये चुना गया कि आप में वो सलाहियतें थी, आप में वो लोगों को

0: चलना चाहिए, इसलिए कोई इसको कामयाबी होनी चाहिए। और जो हमारे जिन्हों साथियों ने और भी लीग शुरू, वो भी हमारे अपने भाई हैं, अपने बेटे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो अपनी बसात के मुताबिक एक और नौजवानों को लेकर साथ चल रहे हैं। ये जो लोग यहाँ अपना क्रिकेट दीवाने का यहाँ प्रोग्राम करते हैं हर जुमरात को, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम निकालना और कंसिस्टेंटली आना ये बड़ी डेडिकेशन होती है। यही डेडिकेशन है जिसकी वजह से आज जितने भी आपकी इंतज़ामिया आज से पहले रह चुकी हैं, उसमें इफराज रह चुके हैं, बेशुमार और भी तायर रह चुके हैं, इन सब को मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हर एक ने अपना वक्त के मुताबिक इसमें डाला, शायद ने बहुत ही अच्छा इसमें हिस्सा डाला, लेकिन उसने जो अपने अलामा इकबाल क्रिकेट क्लब बनाया, उसका एक काम बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब काम हुआ कि नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को भी उन्होंने क्रिकेट खिलाने का एक शौक़ पैदा किया। क्योंकि काम बेशुमार है, बच्चे हमारे ही हैं, वो जो पहले होते थे ना, जहाँ हम 20 हुआ करते थे, अब 30 हो चुके हैं, 30 के बजाय अब 50 हो चुके हैं, जनरेशन हैं, बच्चे यहाँ बढ़ चुके हैं। और जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बुराइयों से भी रोकी रखती है और उसके अलावा आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद ही ऐसे ही काम करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी पूरी आपके टीम के जो साथी हैं, इब्रार अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए, ज़ायद अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए। नए साथी अभी ज़हीर हैं आपके साथ, अभी शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब, प्रोफेशनल लोग हैं, उसके बावजूद वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं। जो रह गए हैं वो भी आप इनको ज़रूर याद करना, क्योंकि अगर कोई मिस हो जाता है तो बड़ा दरा दिलाज़ारी होती है।
1: जी बहरहाल, ये जो आपने कहा है कि मौला आपको खुश रखे, सलामत रखे, मैं मशकूर हूँ कि आपने इतने खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए बोले और मेरी इस खिदमत और नौकरी को आपने सराहा। देखें मोहम्मद अली भाई, ये 20 साल जो हैं, मैं ये नहीं समझता कि ये कामयाबी है। मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि ये लेगेसी मेरे मरने के बाद भी चलती रहे। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं चेयरमैन से तब्दील कर लेना चाहिए इनको, कई दफ़ा कहा है कि छोड़ें, मुझे जाने दें, मुझे फुर्सत दें, कोई और आ जाए। जब तक मैं हूँ ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि मैं ना हूँ और लीग चल रही है और मुझे याद किया जाए कि ये सीनियर हैं। जैसे कि कुछ लोगों को हम अभी याद कर रहे हैं, मसलन हम पिछले को ना याद कर लेते हैं कि ज़ीशान शाह साहब थे हमारे शुरू करवाने वालों में। इसके अलावा नज़ाकत ने हमारी मदद की है, इसके अलावा उबैद साहब ने हमारी मदद की है, इसके अलावा जो हमारे एक साथी हैं, यानी कि जो हमारे चले गए हैं साथी, उनमें काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं कि जो नाम रह जाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा, तो दो तीन आदमियों के नाम ले दिए मैं। तो इसी तरीके से जो मौजूदा कमेटी है हमारी, उसमें लतीफ़ साहब हैं, ज़हीर हैं, खालिद साहब हैं, हमारे ज़ुल्फ़कार भाई हैं, ज़ाहिद सलीम साहब हैं, इब्रार ख़ान साहब हैं, ये हमारी मौजूदा कमेटी के ये लोग हैं, मैं खाकसार हूँ इनके साथ, मैं तो इनका खादिम हूँ ना, ये सारे बड़े लोग हैं। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं मोहम्मद अली भाई के, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हमारी लेगसी तभी बन सकती है कि अगर हम ना हों जिस काम को हमने शुरू किया है, और हमारे मरने के बाद या हमारे हट जाने के बाद वो काम चल रहा है, तो फिर तो हमारी लेगसी है, हमारी यानी कि विरासत है कि हमने कुछ किया है, विरसा है, विरसा छोड़ा है। मगर ना ये तो है ना कि मिसाल खुदा ना खास्ता मैं ज़िंदा हूँ और लीग ख़त्म हो जाए तो फिर मैंने क्या किया, 20 साल ज़ाया कर दिए लोगों के। तो ये तो एक इसको इस खतूत पर चलाना चाहिए कि हम हों ना हों इस यानी कि जहान में, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, तो फिर तो हमने अच्छा काम किया है। जैसे कि आपने ये पीएमसी का किया और पीएमसी को इतना अरसा दिया, आप भी 20 साल से ज़्यादा मेरा ख्याल चेयर रहे और अभी आप साइड पे भी हैं और मदद भी कर रहे हैं, साथ भी हैं हमारे। तो यानी कि ये एक है कि कामयाब इंसान वो होता है कि जिसके नक्शे कदम पर कोई चलते रहें लोग। यानी कि अगर ये पीएमसी चलता रहेगा तो मोहम्मद अली भाई जिंदा रहेंगे सारी ज़िंदगी, या जो गुजर गए वो जिंदा रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता पीएमसी ख़त्म हो जाए तो जो हमारे मिसाल जिनको अफसीर शहीन साहब हैं या जहूर साहब, मैं जिनके नाम जानता हूँ, या और कोई हमारे
0: हाजी
1: गुलाम नबी साहब जो पुराने चेयर हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जब तक ये खड़ी रहेगी बिल्डिंग, जब तक ये चलती रहेगी, तब तक ये नाम बाकी रहेंगे। तो इसलिए علامہ اقبال سنڈے کرکٹ لیگ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ

0: ये चलती रहे, हमारे बात भी चलती रहे, हम जब तक हैं खिदमत करेंगे तो फिर तो ठीक है। तो अगर ये है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हम गुस्से में आ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े जैसे होते हैं, तो इन चीज़ों से अल्लाह बचाए। तो बहरहाल ये सबसे बड़ी जो कामयाबी है मेरी नहीं है, ये कमेटी की कामयाबी है। एक कमेटी बनी है, कमेटी ने अपने फ़राइज़ लिए हैं, कोई खजानची बना है, कोई सेक्रेटरी बना है, कोई मिसाल के तौर पर फिक्सचर कर रहा है, कोई ग्राउंड्स कर रहा है, कोई अंपायर का कर रहा है, कोई निज़ाम का कर रहा है, कोई पानी और खाने का कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलके होती हैं ना तो फिर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। हाँ, तो ये खूबसूरत तरीके से चल रही है। इसमें मेरे ना होने से मुझे खौफ नहीं है कि नहीं होगा। जैसे फिर अफराज साहब थे तो बड़ा अच्छा चल रहा था, अफराज साहब चले गए तो अभी चल रही है, तो ये लेगेसी में अफराज साहब का नाम आता रहेगा। हाँ, तो ये एक खूबी इसी में है कि हमने वहाँ भी काम किया, उसके साथ किया, उसके साथ रहे। तो सब कदर करते हैं, सब इज्जत करते हैं, और इंशाल्लाह आपकी दुआएं।
1: शाह साहब, ये तो आप कह रहे हैं ना कि इसकी कामयाबी है, चलता रहे, लेकिन क्रिकेट में जो नौजवान हमारे बच्चे खेलते हैं बड़ा टैलेंट है, आपकी क्या ख्वाहिश क्या है ये कहाँ तक पहुँचे?
0: देखिए जी, अगर
1: आरज़ू होती है कि
0: हाँ
1: ये भी
0: आरज़ू तो होती है कि हमारे माशाल्लाह बच्चे जो हैं, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर किसी प्रोफेशनल के हमने इंटरव्यू किए हैं अखबार के लिए, न्यूज़ के लिए, टीवी रेडियो पे इंटरव्यू आप भी करते हैं माशाल्लाह, हमने भी कोशिश की है, तो उनमें एक चीज़ जो आती है ना, मेहनत बड़ी होती है कि बड़ी स्ट्रगल की है जी, हमने बड़ा खेला है
1: जी।
0: अब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना हमारे मुआशरे की, कि हम पहले तो खुद इतने क्वालिफाइड लोग नहीं होते।
1: ठीक,
0: हमारी अपनी जो लाइन है ना, टारगेट ही नहीं सेट होता कि बच्चे को हम बताएं कि तुमने बनना क्या है, करना क्या है। यहाँ पर तो पहली प्रॉब्लम यह है कि बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं होता। बच्चा स्कूल से ज़्यादा सीखता है, घर में माँ बाप सिखाते ही कोई नहीं है, बताते ही कोई नहीं है कि तुमने क्या बनना है। अच्छा, माँ बाप यहाँ तक मजबूर हो जाते हैं कि उसको जो मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, या पाकिस्तानी एक या हमारी एक कल्चर है हमारा, या हमारा एक विरासत या विरसा है, या जो हमारा तरीक़ाकार है, जो ख़ानदानी हो या इलाकाई हो या पाकिस्तानी हो, वो भी नहीं सिखा पाते। बच्चे जो हैं, मिसाल माँ बाप पंजाबी बोल रहे हैं, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं कम अज़ कम। अच्छा, ये गोरे ने कितनी खूबसूरत बात की है कि हर स्कूल के अंदर बच्चों को वाकफियत के सेकंड लैंग्वेज सीखो। इन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है, इनको पता है कि सेकंड लैंग्वेज नहीं है, सेकंड कल्चर है, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्होंने कंट्रोल करना है।
1: हाँ,
0: जिसको जिसकी ज़बान आती होगी वहाँ उसको भेजा जा सकता है। भाई, हमारे बच्चों को तो ये बताया ही नहीं जाता कि सेकंड लैंग्वेज जो आपकी मुफ्ती में मिल रही है घर से, तो वो सीखनी चाहिए। तो जैसे कि आपने ये क्रिकेट के बारे में बात की है, तो यही प्रॉब्लम क्रिकेट में भी आती है कि माँ बाप बच्चे की क्रिकेट को ये समझते हैं, ये तो पढ़ ही नहीं रहा, ये क्रिकेट चला गया। अब उसने क्रिकेट में मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। अब ये बच्चे की मेहरबानी है और खुदा का टैलेंट है कि वो अच्छे चक्के मारने, चौके मारने शुरू कर देता, अच्छा नाम पैदा करता है। तो माँ बाप एक दफा जाके देखते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं अच्छा मेरा बच्चा खेल रहा है जी, वो बड़ा अच्छा खेल रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ भाई। तो माँ बाप के पास ना तो टाइम होता है ना साथ देते हैं। तो इसीलिए अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरी बात वो कैप्टन भी सुने, वो खिलाड़ी भी सुने, मैं सबको जानता हूं। जो ग्राउंडों में खेल रहे थे उन्हीं के बच्चे जो हैं ज्यादातर अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि बाप के साथ जाते थे, थोड़ा सा टाइम मिल जाता था,
1: बिल्कुल।
0: तो ये अगर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है प्रोफेशनल बने या फर्स्ट क्लास खिलाड़ी बने, नेशनल ना भी बन सके, इंटरनेशनल ना भी बन सके, तो कम से कम फर्स्ट क्लास खिलाड़ी में आ जाए, या कम से कम ये है कि प्रो हो जाए, कि उनको पैसे मिलते हैं, क्लब पैसे देते हैं, इतना तो हो जाए ना
1: जी जी।
0: तो वो तभी हो सकता है कि माँ बाप बच्चे को लेके जाएं ग्राउंड में, साथ दें, मेहनत करवाएं, और फिर उसके टैलेंट को उजागर करें, फिर कामयाबी हो सकती है। और ये जो एक प्रोफेशनल बनने के लिए, मैं नहीं समझता कि हमारे बच्चे जो है इतना टाइम दें, बल्कि बच्चा तो देना चाहेगा, बच्चे को गेम पसंद होती है, माँ बाप की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि नहीं यार इतना नहीं खेलो, बस करो यार क्या है, पढ़ो तुम। हालांकि वो ना वो कौवा चला हंस की चला अपनी भी खो बैठा, ना वो पढ़ता है ना वो खेलता है, आखिर में वही नॉर्मल। भाई बात यह है कि आपने रिस्क कमाने के लिए आप जो मर्जी काम करें, रिस्क कमाने के जॉब, यहाँ की एक अच्छी बात बताता हूँ कि यहाँ जॉब की इज्जत है, आप क्या करते हो उसकी इज्जत नहीं है। भाई अस्पताल में अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी तो ऑपरेशन कर रहा है, छुरियां चाकू चला के, मेहनत करके, सफाइयां करके तो अपने पैसे कमा रहा है। कोई अकाउंटेंट है तो जरबे तकसीमें दे के जमा तफरीक करके कर रहा है, काम तो करना पड़ेगा। ये जो आप व्हाइट कॉलर कहते हैं ना, ये व्हाइट कॉलर दिमाग से काम कर रहे हैं, पेन से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा।
1: जी,
0: कोई अपनी मर्जी से अगर कोई को दूसरा काम करता है जहाँ उसको अच्छा लगता है काम काम करना चाहिए, लेकिन काम के साथ जो टाइम मिलता है आपको अपनी हॉबी के लिए उसको बेहतरीन ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। और माँ बाप को चाहिए कि अगर वो बच्चे के अंदर टैलेंट देखते हैं तो वो एक प्रोफेशनल बनाए। यहाँ देखें ना, बच्चों को शुरू से ही अकेडमी ज्वाइन करवा दी जाती है।
1: जी,
0: हमारे यहाँ अकेडमी ज्वाइन कराने का सिलसिला ही नहीं है कि भाई छोड़ना जाना पड़ेगा, लाने आना पड़ेगा। एक तो हमें मस्जिद में ले जाना आना पड़ता है, अब अकेडमी में भी छोड़े आने ले जाएं। तो अपने माँ बाप बेचारे जो है ना वो फंसे हुए हैं, भी क्या करें, एक स्कूल ले जाना आना, फिर मस्जिद ले जाना आना, फिर अकेडमी जाना आना, तो
1: कमिटमेंट है ना,
0: कमिटमेंट है। तो उस वजह से हमारे बच्चे शायद उस मेयार पे नहीं पहुंचते। और अगर कोई एक दो चंद पहुंचे हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उनके वालिद की मेहरबानी है, उस फैमिली की मेहरबानी है और उनका अपना टैलेंट है।
1: बेशक बेशक शाह साहब, क्रिकेट की तो बहुत बातें हुई हैं, अभी थोड़ा सा इससे आगे थोड़ा सिलसिला लेके जाते हैं। एक आपको रेडियो प्रेजेंटर मैंने देखा, आपको एज अ रेडियो प्रेजेंटर और टीवी प्रेजेंटर भी आप रह चुके हैं। एक एक शौक है आपको, शौक है बोलने का, शौक है कि अपना जो आपकी ज़बान में दिल में अपनी ज़बान पर ला के दूसरों तक बड़े अच्छे अंदाज से आप पेश करते हैं, ये शौक शुरू से रहा या दरमियान आया, अपॉर्चुनिटीज आई?
0: ये मोहम्मद रफ़ी भाई, इसकी इब्तदा अगर मैं ढूंढूं तो ये कह सकता हूं कि इंसान जब अच्छा सुनने वाला हो, अच्छा समझने वाला हो, तो फिर वही बातें जो हैं हम बोलते हैं। मैंने अपनी किताबें भी लिखी हैं और किताब में भी लिखा है कि हमने कोई लफ्ज़ ईजाद नहीं किए, बल्कि मैंने एक जुमला लिखा है कि पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा अनपढ़ों के लफ्ज़ ईजाद ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं। तो एक आम मिसाल ही दे देता हूँ कि वो स्लैंग लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना, पढ़ा लिखा आदमी बड़ा प्रोसाइज बोलेगा, परफेक्ट बोलेगा, सही तरीके से बोलेगा,
1: नाप तोल के।
0: तो आदमी जो अनपढ़ होगा, मेरे जैसे जाहिल होगा, वो समझाने के लिए कहेगा। मसलन अब रिमोट, जब नया नया टीवी आया तो रिमोट से बंदे वाकफियत हुई, तब रिमोट किसी को लफ्ज़ नहीं आता
1: जी।
0: तो किसी ने कह दिया ये छेड़ू है, छेड़ता है,
1: छेड़ता है।
0: तो छेड़ू तो बकरियां चलाने, अब वो छेड़ू चलते चलते भी बंदों ने पका लिया कि यार ये छेड़ू है। तो बाद में वो लैंग्वेज में, इवन वोकैबुलरी के साथ हमारी जो डिक्शनरीज होती है उसमें भी अल्फाज आ जाते हैं जो नॉर्मल होते हैं
1: जी जी जी।
0: इसी तरह अल्फाज की यानी कि बढ़ावा होता है। अब मसला ये था कि मैं सुना, मैंने शायरी की और शायरी के साथ फिर मैंने पहली जो है कि मैंने जंग अखबार के लिए लिखा पाकिस्तान में।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त मैं फैसलाबाद में हुआ करता था, तो हमारे दोस्त भी थे, तो जंग में लिखा। फिर डेली ने वालों ने मेरे लिए, मेरी एक कहानी कामयाब हुई, मेरी एक दो शेर कामयाब हुए, तो उसकी वजह से जो पढ़ने वाले सुनने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा बोलना ये मानी नहीं रखता, जब लोग हमारी गुफ्तगु सुनते हैं आप जैसे लोग, तो फिर वो कहते हैं कि शाह साहब आप आके बोलें, फिर आप टीवी पे आ जाएं या रेडियो पे आ जाएं या लिखें या करें कुछ। तो वो एक सिलसिला तब वहाँ से शुरू हुआ बोलने का, चलते रहे बहरहाल। तो जहाँ तक आया कि फिर यहाँ आके एक नया जो सिलसिला अखबार शुरू किया, तो उसका भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ताकि ये जो ज़िंदगी की बातें होती हैं कभी कभी मौका मिल जाता है। तो
1: इलम अखबार
0: जब मैंने शुरू किया, तो वो शुरू करने का मकसद यह था कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें ना तुम्हारे दिल में कोई सुराख है, और इसका जो सबसे वर्स्ट तरीका है कि वो मुश्किल से मुश्किल कि तुम किसी वक्त डिसेबल हो सकते हो, यानी कि आपको ना स्ट्रोक हो सकता है। तो बंदा, मैंने वालदा साहबा को देखा था कि स्ट्रोक हुआ है, तो एक पैरलाइज हो जाता है बंदा, तो इंसान मुश्किल में। तो उस वक्त मैंने सोचा बैठ के काम करना चाहिए, तो बैठ के करने वाला कोई यही है कि अखबार निकालते हैं, ऑफिस में बैठे रहेंगे, लंगड़े लूले हो गए तो बैठे रहेंगे। तो वहाँ से अखबार फिर निकाला, तो अखबार जब निकाला तो वो मैं पाकिस्तान का यानी कि था यूज़ टू के ये होती हैं चीज़ें, तो वो तो मैं जानता था
1: जी।
0: लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब अखबार प्रिंट करवाने के लिए भेजा, उन्होंने कहा ऐसे नहीं है, PDF फाइल में भेजो
1: जी।
0: तो फिर वो कंप्यूटर के थ्रू और फिर सारा थोड़ा सा हुआ। तो 2010 में हमारा जो पहला एडिशन आया, अल्लाह का शुक्र है, तो उसी सिलसिले से चलता रहा, कभी आप लोगों ने रेडियो पे बुला लिया, कभी एक शबीर मुगल साहब का रेडियो होता था, अल्लाह उन्हें भी खुश रखे सलामत रखे,
1: अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे।
0: इसी तरह डीएम डिजिटल चला तो फिर उन्होंने ले लिया, उसके साथ कम से कम 8-10 साल प्रोग्राम हमने किए, फिर कभी नूर पे, कभी हदायत पे, कभी यानी कि मुख्तलिफ चैनल जितने भी हैं अहले बैत पे मुख्तलिफ चैनल अभी भी चलते हैं, कभी कभी हो जाते हैं प्रोग्राम। और फिर लिंक एफएम ने हमें माशाल्लाह हमें नसीब हुआ पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर को, तो तब से लिंक के साथ भी हैं, हमारा लिंक से लिंक बहुत अच्छा है
1: माशाल्लाह।
0: तो ये सिलसिला बस ऐसे ही, आप लोग बातें जो लोग सुनते हैं तो वो अप्रिशिएट कर देते हैं, तो फिर हमें मौका मिल गया और आप लोगों ने हमें मौके फराहम किए, ये आप लोगों की वजह से हमें मिले हैं, वरना हमें कोई ऐसा टैलेंट नहीं।
1: आप लिखने में भी माशाल्लाह बहुत माहिर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मौका मिला, आपने अपनी किताबें भी लिखी हैं, कौन सी किताब आपने लिखी?
0: किताबें जो मेरी जो शाया हो चुकी हैं वो तीन किताबें हैं। पहली किताब जो थी वो सलाम बर मोहम्मद वाले मोहम्मद किताब है, उसका नाम है सलाम बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये किताब पहले तो मैं कोई और लिख रहा था, तो हमारे एक मोहसिन हैं, दोस्त हैं मेरे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहले ये लिखें तो फिर
1: उसके बाद
0: को शुरू करें। तो फिर मैंने कहा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होना चाहिए, तो फिर वो मनकबत की है, उसमें हमद है, नात है, मनकबत है, नुहा है, मुख्तलिफ चीज़ें लिखी गई हैं, कसीदे हैं, तो वो किताब है। और फिर उसके बाद चूँकि शायरी कर रहा था तो शायरी को समेट के किताब में लिखा, तो शायरी मुख्तलिफ तरीक़ों से थी, तो उसका नाम फिर दीवान सैयद रखा। वो भी किसी दोस्त ने कहा कि मेरी तरफ से ये नाम है कि ये रखना चाहिए, तो मैं लोगों की बात मानता हूँ ना। तो फिर अखबार के ऊपर, चूंकि अखबार नहीं कर रहा था तो उसके ऊपर मेरे अकवाले सैयद प्रिंट हुआ करते थे बच्चों के लिए, छोटी छोटी बातें। तो जब कोरोना आया ना, तो सब किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि इसको इनको पहले आप दूसरी किताब ना लिखें, पहले ये मेरे पास जमा पड़े हैं। अली अकबर ने उसमें मदद की पाकिस्तान से, उसका भी शुक्रिया अली अकबर। तो हमने वो किताब जो है वो तो इतनी बड़ी बन गई कि वो तकरीबन कोई 1000-1500 पेज बन रहा था, तो फिर हमने उसको छोटा किया, फिर दो हिस्सों में किया, फिर दोनों हिस्सों में हमने उसको लिखा। तो उसमें भी जब नाम, मैंने कहा कि भाई अकवाले सैयद मैं मुनासिब नहीं समझता, अभी इसमें तो बड़ी आ जाती है, तो मैंने उसको कह लिया कि तुम गुजारशात सैयद इसका नाम कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो टाइटल बन गया गुजारशात सैयद। तो यहाँ पर जो है हमारे दोस्त अरशद रचियाल साहब, उन्होंने कहा जब देखा तो उनसे मशवरा, उन्होंने कहा ना ना ना शाह साहब अकवाले सैयद के नाम से छपनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: फिर टाइटल चेंज किया, फिर अकवाले सैयद के नाम से भी प्रिंट की। तो वो तीसरी किताब है, उसमें यानी कि एक दरवेश और फ़कीर का तज़किरे पे काफ़ी यानी कि बातें लिखीं, और कुछ अकवाले सैयद जो थे वो अखबार से ऊपर प्रिंट होते रहे, तो वो अच्छा बच्चों ने बड़े पसंद किए, जो हमारे क्रिकेट खेलते थे, अखबार पढ़ते थे, तो उसके लिए ये हमें हमेशा फरमाइश रही कि इसको इंग्लिश में भी करें। तो उसमें अल्लाह खुश रखे मेरी बीवी को, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जिंदा है वैसे,
1: डरा दिया हमें।
0: वो ये सारे पता है, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम कहें ना अल्लाह जन्नत नसीब करे तो समझते हैं नहीं ये मुर्दा को मिलनी है, नहीं मर के नहीं, अल्लाह जन्नत हर आदमी को नसीब करे, अल्लाह हमें भी नसीब करे। तो वो जो है वो मेरी मुआवनत करती रही, तो वो इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके अखबार के ऊपर आता रहा। तो अखबार जो है जब तक प्रिंट होता रहा तो उस वक्त तो उस पर आते रहे। तो अब जो अखबार है ऑनलाइन हो गया, कोरोना ने हमें ये काफ़ी मदद की कि हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया,
1: ऑनलाइन कर दिया।
0: हाँ, तो अब ऑनलाइन है, इल्म न्यूज़ कोई भी हो तो उसको देख सकता है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब आपका बड़ा अदब से बड़ा लगाव है माशाल्लाह, बेशुमार यहाँ महफिलें हुई हैं, प्रोग्राम में योक्षर अदब, आपने अपना बज़्म इल्म अदब के यहाँ बेशुमार प्रोग्राम किए। बशबी साहब अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, उन्होंने अपनी कोशिशा साहिबा ने बड़े यहाँ शेफिल में बड़े लाजवाब प्रोग्राम के, डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अल्लाह ताला उनको
0: जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए जी, एक बहुत बड़ी शख्सियत
1: थी। उनसे पहले मैं आपको बात करूँगा, यहाँ भाई ऋषि साहब हुआ करते थे लाइब्रेरियन, उनका बहुत बड़ा रोल था अदब के हवाले से, लिटरेसी कैंपेन वगैरह उन सारी चीज़ें देखा जाए, ये शौक़ तो था। आया इस इलाके में लोगों में अभी भी वो शौक़ है या धीमा पड़ गया है?
0: नहीं मोहम्मद जी भाई, ये बात तो नहीं, धीमा तो नहीं पड़ा। जहाँ तक ताल्लुक है कि अदबी महफ़लें हर जगह पे होती हैं और जारी व सारी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने जो बज़्मे इल्म व अदब है ये पहले तो घर से शुरू की थी
1: जी।
0: एवरी मंडे हमारे घर में ही प्रोग्राम होता था और तब मुख्तारुद्दीन मुख्तार साहब, डॉक्टर कैसर जैदी साहब और अब्बास साहब, सईद जो उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद मोहतरम सईद साहब, वो इस तरह और भी सारे काफ़ी सारे डॉक्टर असद साहब, मुख्तलिफ लोग जितने भी थे वहाँ तशरीफ़ लाते और महफ़िल को चार चांद लगाते रहे, बहुत सारे साथी यानी कि। तो फिर रेडियो पे आए, फिर टीवी पे, फिर मुख्तलिफ जहाँ भी हमें मौका मिला है। इसी तरीके से कौसर शाह आई तो उन्होंने भी बहुत से प्रोग्राम किए। असल में जो लोग, मैं नहीं समझता कि हम करते हैं
1: जी,
0: मैं समझता हूँ कि लोग हमसे करवाते हैं। मसलन जो भी लोग पसंद करते हैं, मैं नाम ले जाऊँ, मिसाल आशिक भाई अक्सर हमें कहते हैं कि शाह साहब ये प्रोग्राम करें, ये करें, ये करें। ऐसे लोग जो होते हैं हमें प्रमोट करते हैं, ऐसे लोग हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं कि हम करें यार, ठीक है वो करें तो हमें करना, तो लोग हमें कहते हैं तो हम करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सियासतदानों से अगर जो मांगोगे ना वही मिलेगा ना भाई, जो प्राइम मिनिस्टर है अब उससे इमरान खान की आज़ादी मांग लो या मुल्क की बेहतरी मांग लो, आपकी मर्जी है ना, जो मांगोगे वही वो करेंगे ना, काम तो उन्होंने वही करना है। तो आप हमसे जो डिमांड करेगा कोई तो हम वही करेंगे ना। अगर कोई बज़्म कहेगा कि मुशायरा करवाना है तो मुशायरा करवा देंगे, बज़्म अदब की कोई मीटिंग करनी है तो वो कर देंगे। तो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, हम तो खादिम हैं ना, करने वाले हैं। तो इसमें जो जिन लोगों ने अच्छे तरीके से काम किया मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मिसाल मुख्तारुद्दीन मुख्तार साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए, हर जगह पे वो सदारत करते थे, हमारे इस इलाके की एक शान थे, बल्कि बरतानिया का एक नाम थे,
1: बहुत बड़ा नाम
0: और बहुत ही अल्लाह उनको गरीब रहमत करे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उनको कुर्ब नसीब अता फरमाए, ये हमारी दुआएँ हैं। इसके अलावा जो शबीर मुग़ल साहब हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो उनके पास टैलेंट था उसको बुरुए कार लाए, उन्होंने कोई कहते हैं रिसाला भी प्रिंट किया मेरे आने से पहले,
1: मुझे नहीं मालूम,
0: रिसाला प्रिंट किया, रेडियो चलाया, रेडियो रमज़ान चलाया, फिर रेडियो ईमान चलाया, यानी कि एक बड़ी कोशिश के साथ, एक लगन के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने अपना हिस्सा शहर में डाला। ये एक यही विरासत होती है कि हम जो उन्होंने किया है हम याद भी कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं,
1: कर रहे हैं।
0: इसी तरीके से उनकी जो कमेटी थी, उनके मेम्बरान थे, वो भी हमें याद हैं। इसी तरीके से कौसर शाह साहिबा जो हैं वो प्रोग्राम करती रही हैं, उन्होंने जो महफिलें सजाई हैं वो हमेशा प्रोग्राम यानी कि लिंक एफएम पे भी करती रही हैं, उधर ईमान पे भी करती रही हैं, माशाल्लाह उनका एक अपना रोल था। ये जितने भी लोग हैं ये अहले इल्म अहले अदब, इनका माशाल्लाह एक हमारे शेफील्ड में खासा एक रोल रहा है और है अभी भी, स्टिल है। और ये प्रोग्राम चल रहे हैं, ये ज़रा होता है कि भाई प्रोग्राम चूँकि मुशायरे यकदम नहीं होते, कभी कभी एक लहर आती है, जैसे कि एक अब पतझड़ का मौसम आ रहा है ना, तो इस पतझड़ के मौसम में हर बंदे ने थोड़ा थोड़ा बीमार होना होता है, पत्ते वैसे झड़ जाते हैं, बंदे वैसे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे मौसम होते हैं कि अब मुशायरों का मौसम है, अब काम का मौसम है जी, यहाँ तो आपको पता ही है ना। तो अब इस लिहाज से तो अल्लाह का शुक्र है चलते रहेंगे, ये सारी ज़िंदगी चलेंगे और हम भी चलाएंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर में भी इसकी काफ़ी है। राजा इरफान साहब भी हमारी मदद करते हैं इन मामूलात में, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये सारे लोग जो है ना, असल में देखिए ना, ये सारे वो लोग हैं, आप हैं, हमारी कमेटी के लोगों के हमने नाम लिए, हमने मुख्तारुद्दीन मुख्तार, कैसर जैदी साहब, मुख्तलिफ लोगों के नाम ले रहे हैं, वो शख्सियात हैं कि जो लोगों को जोड़ती हैं, और इनकी बातें जो हैं हम दिल से सुनते हैं और उन्हीं बातों को खूबसूरत अल्फाज में लिखते हैं। यानी कि वो जो बात हो रही थी कि हमने तो अपने लफ्ज से है भी याद नहीं किया, है भी पहले का है और था भी पहले का है और होगा भी पहले का ही है, हमने क्या याद किया, हम तो बोल ही रहे हैं ना जी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों से विरसे में हमने लिए, बड़े लोगों से लिए जो हमसे बड़े थे, तो हमने उनसे सीखा है। तो मैं यहाँ जहाँ यानी इतने नाम लिए हैं, तो मैं यहाँ पर एक पाकिस्तान में भी मुझे फौरन याद आए तो उनका भी ना, हाजी फजल अब्बास, हमारे कल भी टेलीफोन पे बात हो रही थी, तो उन लोगों से हमने सीखा है
1: बहुत खूब।
0: तो ये वो ऐसी शख्सियात हैं, 10-15 शख्सियात के ऐसे ही मैं नाम ले सकता हूँ कि जो मेरे हमेशा। और मोहम्मद अली भाई, मैं एक बात अक्सर करता हूँ और ये दोस्तों को बताना चाहता हूँ ताकि इसको अगर कोई कर सके तो देखो, ईमानदारी ये है कि जिससे जो बात सुनो ना उसका नाम लेके बताओ कि ये मुझे फलां बंदे से बात
1: मिली है,
0: तो फिर खूबसूरती आती है इंसान में। कि मसलन जो मसलन मुख्तारुद्दीन मुख्तार साहब का तो एक जुमला सुना दूं, वो मुझे वो एक
1: उनका जुमला भी सुनेंगे, अभी वो ब्रेक का वक्त आ गया है।
0: अच्छा।
1: मुख्तारुद्दीन साहब का नाम चले तो पूरे उसके साथ हमें वफा करनी चाहिए।
2: You are listening to Link FM 96.7.
3: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
4: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
5: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
6: And the winner is...
7: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Sheffield's very own community radio station,
10: Link FM.
11: My name is Shireen.
12: My name is Abdul Rahman.
13: My name is Sai Mudassir.
14: This is Rahul.
15: My name is Rizwan Ishwak.
16: My name is Asham.
17: My name is Azan Mudassir.
18: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.

रे अब जैसे गोवारे में सो जाता है तिफले शीर खार, जैसे गोवारे में सो जाता है

0: अब मुझ मुजतर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर अंजमे कमजोर गिरफ्तारे तलिस में माताब अंजमे कमजू गिरफ्तारे तलिस में माताब। असल में बड़ी मुश्किल नज़म है जी, इसके लफ्ज़ इसकी गहराई ये बहुत बड़ी है। बहरहाल मैंने इसको थोड़ी सी तर्ज में इसलिए पढ़ा कि थोड़ी सी बात जो है तरन्नम पैदा हो जाए। अल्लामा साहब ने खुद चूँकि ये तरन्नम में उस नज़म पढ़ी थी, अल्लामा साहब खुद भी तरन्नम में भी अपनी शायरी पढ़ लेते थे, लिहाजा होती है थोड़ी सी तरन्नम से बात कर रहे हैं, कोई इसमें ये नहीं है। आप जो है पसंद फरमाते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरन्नम में पढ़ सकते हैं। तो जब हम जाते हैं कि आ कहते हैं अल्लामा साहब फरमाते नक्शा पेश कर रहे हैं जी, दरिया किनारे देखना, अगर आप भी दरिया किनारे चले जाएँ, रात का वक्त है, दरिया के किनारे पहुँच गए हैं, अब देखें आप अगर वहाँ का नक्शा पेश करेंगे, लिखेंगे उर्दू में किसी जबान में, कोई दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके जहन के अंदर तखयल तो ज़रूर पैदा होगा। अब अल्लामा साहब हैं, दरिया के किनारे रात को जाते हैं, तो वो कहते क्या है, कहते हैं साइले दरिया पे मैं एक रात था मैं वे नज़र, गोशाए दिल में छुपाए एक जहाने इज़्तिराब। तो बाबा जी फरमाते हैं कि एक दिन जनाब क्या हुआ कि मैं दरिया के किनारे चल पड़ा, दरिया के किनारे पर पहुँचा, और साइले दरिया जो है, दरिया के किनारे पर जो रेत मट्टी या जिस तरीके से हम चलते हैं उसको साइल कहा जाता है। साइल जो है वो दरिया से जो खुश्की वाला जो जगह है उसको साइल कहते हैं। तो लम्हा साहब कहते हैं मैं उस साइल की तरफ जो है वो चल पड़ा, मैं साइल की तरफ जो है वो जा रहा था या चल पड़ा वहाँ पर, तो मैं क्या था कि मैं तो एक रात का वो मंजर बता रहे हैं और कहते हैं कि मैं वे नज़र था, मैं तो एक नज़ारे में मैं हो चुका था, मैं तो जो है वो एक नज़ारत कर रहा था, देख रहा था, एक मंजर की जस्तजू में था, और मैं जो है बिल्कुल मैं हो चुका था, मैं तो उसके अंदर जो है वो उस नज़ारे के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका था, मुझे कोई होश ना था। लेकिन जब एक आदमी जो है ना, ये बड़ा फिर वही बात आ जाती है कि जब इंसान किसी चीज़ में गुम हो जाता है ना, अनफी अपने आप नू गुम करके चप टप जा मोड़ जी नजर आवी, ये कभी कभार अपने आप को गुम करना पड़ता है। और गुम करें मतलब ये है, एक तो ये भी गुम है कि आदमी चलो इस दूसरे कोने में दाखिल हो जाए और छुप जाए, और ये भी इसको भी गुम होना कहते हैं। एक ये है कि अपने सारे काम काज छोड़कर किसी काम के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है जिद्दोजहद करना, उस काम के पीछे लग जाना, उसको कहते हैं जी गुम हो जाना, इस काम के अंदर गुम हो जाना, जिस तरीके से फिर वो दोबारा वो चीज़ नज़र ना आए। तो लम्हा साहब कहते हैं कि मैं भी एक दिन जो है वो एक रात का वो कहते हैं कि मंजर है, मैं दरिया के किनारे चल पड़ा और वहाँ जाकर वो जो नज़ारा, मैं उस नज़ारे में मैं गुम हो गया, उस नज़ारे को देखने में इस कदर मैं हो गया, इस कदर में मेरा दिल जो है उसके उस गिर गया कि मैं आगे वो क्या कहते हैं कि गोशाए दिल में छुपाए एक जाने। लेकिन क्या था, वजह क्या थी, क्यों मैं गुम हुआ, गोशाए दिल में छुपाई, मैं दिल के एक कोने में, गोशा कोने कहा जाता है, कहते हैं कि दिल के कोने में मैं जो है मैंने छुपाया था एक जाने इज़्तिराब। एक इज़्तिराब कहते हैं मुस्तरिब से लफ्ज निकला है, ये कहते हैं बेचैनी, एक बेचैनी जो है वो कहते हैं कि मैंने ये जाने इज़्तिराब, बेचैनी का जो जहान है वो अल्लामा साहब कहते हैं कि मैंने इस अपने दिल में छुपाया हुआ था। अब जी देखें इसको, ये मैंने इसलिए कहा था कि ये मुश्किल है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझाना आगे जो है, जब आगे हम खिज़र रसूल के वाक़े शुरू को फिर वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये शायर जो है ये पहले जो उसका जो नज़म या कोई गज़ल के पहले जो इशार होते हैं और आखिरी होते हैं ये हमेशा जो है वो कुछ मुश्किल से थोड़े होते हैं, उनका ज़रा आज़ाद करना इतना आसान भी नहीं होता और समझाना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल अल्लामा साहब ने, आप ये समझें कि अल्लामा साहब दरिया कर एक साहिल पर वो गए, आप भी दरिया पर जा रहे हैं, वहाँ पर जो मंजर देखा, अल्लामा साहब कहते हैं मैं उसके अंदर गुम हो गया, वो गुम इसलिए हो गया कि मैं तो ये जो था, मैं तो दिल में ये सोच रहा था कि ए अल्लाह ताला, ये तेरी तख्लीक, ये सारे का सारा मंजर, ये रात का सुहाना मंजर, ये सब कुछ जो है, हर चीज़ जो है बड़ी खबर, अगर उसकी वजाहत करेंगे वो ज़्यादा आसान, फिर आप समझिए कि रात का मंजर है, हर चीज़ जो है बड़ी खामोशी है, कोई किसी किस्म का शोर शराबा नहीं है, और शायर जो है, जो लोग रात को, आपने आपने देखा होगा कि रात को उठने वाले, रात को इबादत करने वाले, ये सारगाई करने वाले, ये उस वक्त लोग इसलिए उठते हैं, ये तो तहज्जुद की नमाज है अल्लाह को याद करने के लिए, इसलिए कि उस वक्त खामोशी होती है, सुकूत होता है, कोई जिंदगी कोई आदमी उनको डिस्टर्ब नहीं करता, किसी आदमी की ना आवाज़ कान में पड़ती, वो बिल्कुल इतने गुम होकर नमाज पढ़ते हैं, इतने गुम होकर उसकी इबादत करते हैं, इतने गुम होकर उसको तलाश करते हैं कि मिलता ही उसी सूरत में उस वक्त है, क्योंकि वो कहता है मैं तो उस वक्त जो है वो आसमानी दुनिया पर आ जाता हूँ, मैं तो कहता हूँ है कोई मांगने वाला, लेकिन मांगने वाले शख्स हुए हुए। देखे ना जी, एक आदमी जो है किसी गाँव में आता है, वो आवाज़ देता है हेलो ये जो है मैं आ गया हूँ, है कोई मांगने वाला, खजाने मेरे पास मौजूद है, ले जाओ जो लेना है। तो जो सोए हुए हैं उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, उनको सुबह पता चलेगा, वो जागे जो जागने वाले चंद बैठे हुए हैं इंतज़ार में हैं, उनको पता है वो आकर खजाने ले लेंगे। तो लामा साहब कहते हैं कि मैं भी जो है दिल के अंदर एक बहुत बड़ा जहान, बहुत बड़ी एक नई दुनिया, एक जो है बेचैनी की कैफियत कि मेरे अंदर जो तकलीफ, मेरे अंदर जो एक एक चीज़ जहन के अंदर आ गई, दिल के अंदर पैदा होगी कि यार ये कायनात का निज़ाम किस तरह है, ये किस तरह ये खामोशी है, ये कैसा माहौल है, ये कैसा मंजर है। तो अल्लामा साहब जो है इस चीज़ को कहते हैं, अगर शब सकूत अफजा अवा आसूदा दरिया नर्म सैर थी नज़र है रंग, ये दरिया है ये तस्वीर आप, वो फिर अब उसको वजाहत कर रहे हैं कि शब जो है सकूत है, बड़ी खामोशी है रात में, अवा आसूदा है, बड़ी आस्था चल रही है, बड़ी नर्म है, कोई चखड़ वगैरह नहीं है, कोई ज़्यादा वो शोर शराबे वाली नहीं है, बड़ी आसूदा है, और दरिया नर्म सैर, दरिया आस्ते आस्ते चल रहा है, दरिया के चलने में भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है जी। बहरहाल जी, ब्रेक का टाइम है, बड़ी खूबसूरत बात आ रही थी, लेकिन मिलते हैं ब्रेक के दूसरे से।
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
3: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
2: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114296092। पार्ल बेकर्स।
4: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
5: Listening to Link FM.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
6: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.
8: Linking communities. This is Link FM. 96.7 FM.
5: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

you just tune in, this is Link FM 96.7 FM, and this is Drive Time Show.

जी उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे आज के ड्राइव टाइम को। मैसेज भी करते रह करें और बताइए करें कैसा लग रहा है ड्राइव टाइम, और अगर आज कोई ऐसा ट्रैक लगा जो आपको पसंद आया जरूर बताइएगा 07939849339।

हमारा और आपका साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगता होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ बहुत अच्छा, बहुत नाइस ट्रैक्स आपके लिए लगाएंगे, उम्मीद करेंगे आप पसंद करेंगे। साथ देते रहिएगा, हम हैं आपके साथ और आप हमारे साथ।

0: जी उम्मीद करते हैं कि आज का ड्राइव टाइम शो भी आपने एंजॉय किया होगा। हमने कोशिश की कि सब रंग मौजूद हों ड्राइव टाइम शो में। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका सफर हमारे साथ अच्छा गुजरा होगा। वाह, आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं या ऐप के जरिए कहीं और सुन रहे हैं, मोटरवेज पर हैं, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए और आपका सफर इसी तरह हंसी खुशी गुजरता रहे। इट्स टाइम फॉर मी टू से खुदा हाफिज। सो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी एक और ड्राइव टाइम शो के साथ। फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google. Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
2: काका जी, इश्क से घर नहीं चलते, कमाना भी पड़ता है। पहले जाओ, कमाना सीखो, फिर लड़की के बारे में सोचना।
3: तो सिमरा, यकीन करो मैं करके दिखाऊंगा।

तुसा जितने भी संगी बेली ते दोस्त इसलै प्रोग्राम सुनी रहे हो कश्मीर ते पठवार ने रंग, मैं तुसा सारे की अपने शोने विच वेलकम सत बिस्मिल्ला जी अनवाखना। ये प्रोग्राम ब्रेड फाउंडेशन रेडियो पर भी सुनिया जाई रहा। जितने भी ब्रेड फाउंडेशन रेडियो ने लिसनर है उन सब की एक बारी फिर मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि तुसा सारे ठीक ठाक असो, खैरी मेरी असो, चाहे तुसा गड्डी सुनने हो, कार सुनने हो, बार सुनने हो, गैरेज ही सुनने हो या टेक वे रेस्टोरेंट ही सुनने हो, तुसा सारे की वेलकम टू द शो। अगर तुसें भी कोई प्यारा जा गीत सुनना चाहते हो अपनी पसंद ना, तो जरूर जनाब तुसा सके रिंग करी सकने हो 01142618181। अगर तुसा माड़े रे शर्मीले जे हो तो फिर तुसा असा की व्हाट्सएप ने पर 07939849339 उसने पर मैसेज करी सकने हो। असा फेसबुक ने ऊपर भी लाइव है और नाल ही नाल जनाब ठीक ठाक ने ऊपर भी। मास्टर मोहम्मद रजाक साहब वेलकम टू द शो। एक खाली यूजर है आने जी, सलाम अंकल, वालेकम सलाम। मोहम्मद सलीम साहब साढ़े बड़े प्यारे संगी बेली ते दोस्त जनाब लुटन थो साढ़े नाल मौजूद है, असा उन्हें की भी वेलकम टू द शो आखने। राबिया भट्ट साहिबा उन्हें की वेलकम आने आने जी फ्रॉम बोल्टन, थैंक यू सो मच। सत बिस्मिल्ला जी है यानो बोल्टन वाले, क्या हाल है, ठीक हो, हैरी मेरी हो। और नाल ही नाल असा जनाब तुसा की बड़े प्यारे प्यारे गीत सुनासा। जफर इकबाल साहब वेलकम, अमजद साहब वेलकम। अगर तुसा अपनी पसंद ना गीत सुनने चाहते हो, अपने दोस्तों ने यारा बेलिया ने ना करना चाहते हो तो जरूर राबता करी सकने हो 01142618181। और व्हाट्सएप ना नंबर 07939849339। इरफान राजा साहब वेलकम, सोहेल अयाज साहब वेलकम। हूँ असा जुले अपने पहले गीत नहीं जानब और इसे उम्मीद ने नाल के तुसा

मैं तुझे पसंद तू मुझे पसंद, मैं को तू पसंद है ते को मैं पसंद हूँ, कितना प्यारा संग है। ये तुसा नी खिदमत च लाया सा असन अल जनाब उस्मान साहब है, वो आखने जी के राजा मुंशी साहब ने फरमाइश पूरी कर सो जरूर जरूर जनाब क्यों नहीं, हुण ब्रेक अशनी ब्रेक तो बाद जरूर पूरी कर सा। और मियां अब्दुल रहमान साहब वेलकम टू द शो। एक भाईर पुछने टिक टाक ने उपर के तुसा दिहाड़ी टैक्सी करनी हो, बिल्कुल जी मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, कोई शक शुबा नहीं। और एक और यूजर है जनाब आने माशाल्लाह जी वेरी गुड थैंक यू सो मच। मलक खालिद साहब तुसा ने भी फरमाइश पूरी की जासी जनाब, क्या याद रख सो राजा औरंगजेब साहब जनाब इटली तो साढ़े नाल मौजूद है, असा उन्हें कि अपने शो कश्मीर ते पठवार ने रंग च वेलकम आखने आ। ये बड़े बड़े प्यारे संगी है जनाब, इंग्लैंड असा बड़ा अरसा गठिया इक्के फैक्ट्री च काम किया। औरंगजेब साहब वेलकम, सत बिस्मिल्ला जी हैं नो, क्योंकि हूँ गीत शीत ना लाने का इस मारिया के ब्रेक ना टाइम बड़ा नज़दीक आ, ब्रेक ने उपर जुलसा मुड़ी वापस ऐसा था फिर सौ की सोने सोने प्यारे प्यारे मिठड़े मिठड़े गीत सुनासा। तुसा सुने रहे हो लिंक एफएम 96.7, तुसा ना मेजबान आबद हुसैन तुसा आस्ते लाइव प्रोग्राम स्टूडियो चो पेश करी रहा अपनी मां बोली पठवाड़ी पहाड़ी ते मीरपुरी ने विच। इसे उम्मीद ने नाल के तुसा पसंद फरमासो। मेरे अबीबी वेलकम टू द शो, माड़ा ता तुसा ना साथ रहे सी 8 बजे तोड़ी। इस उम्मीद ने नाल के तुसा मेरा साथ सोने तरीके नाल निभासो। जी जी हुण जुल्लिया थोड़ी जी देर ब्रेक पर, तुसा भी कुछ चाह पानी पी गिनो, ब्रेक तो बाद वापस ऐसा था फिर तुसा की सोने सोने

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: The voice of the communities. 96.7 Link FM.
16: Link FM.
17: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
18: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम,
19: सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
17: लिंक एफएम शेफील्ड.
20: Follow us on facebook.com/linkfm96.7.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बारी फिर एक बार फिर तुसमी जितने संगी साथी दे बेलियो तुसकी वेलकम टू द लिंक एफएम 96.7। तुसों ना मेजबान अब्द हसन तुसों से प्रोग्राम पेश करी रिया कश्मीर ते पटवार ने रंग। इसी ब्रेक ने दौरान जनाब शफील नी मायानास शख्सियत फखरे शफील शाने शफील कप्तान शफील दिलों पर राज करने वाली शख्सियत जब हम जनाब नमरदार राजा गुलफराज खान साहब उन्होंने फोन किया सा मोहब्बत ना इजहार करी रहे से प्रोग्राम पसंद फरमाई रहे से। नमरदार गुलफराज साहब साड़ी जिंद साड़ी जान साढ़े माथे न जुमर सर न ताज असा उन्होंने एक बारी फिर वेलकम टू द लिंक एफएम 96.7 आने हैं। आहने जी बड़े अरसे तो बाद तुसानी आवाज सुनी तब पता ही लगना के स्वाद आई गया। थैंक यू वेरी मच नमरदार गुलफराज खान साहब। और नाले नाल जनाब उन्होंने बड़े प्यारे संगी बेली था दोस्त चंद जमान मुगल साहब ने भी फोन खड़काया जनाब। अरे ये भी मुखबतों बखेरी रे प्रोग्राम पसंद फरमाई रे। ये भी नैदर है जिन्हें किंग है जनाब स्टेशन मास्टर। और नमरदार राजा गुलफराज खान साहब की तरफों जनाब चंद जमान मुगल साहब और आस्ते ये गीत लासा और भी जितने नमरदार राजा गुलफराज खान साहब ने संगी बेली ते दोस्त इसलिए सुनी रे तमाम टैक्सी ड्राइवर भरा रेस्टोरेंट वाले टेक वे वाले डिलीवरी ड्राइवर और भी जितने संगी बेली ते दोस्त सुनने उन सारे ने ना और जितने भी ठीक ठाक ने उपर मौजूद है और इसलिए प्रोग्राम सुनी रहे या फेसबुक पर उन्होंने नाम ही कर सा और स्पेशल जनाब खुरम साहब उन्होंने नाम ही कर सा। बड़ा प्यारा गीत आ ए सुन सो चन जी नमरदार जी आ रहे दे गीत जरा गड्डी खिलाई ओड़ो कुरे पासे नाल। और इस गीत ने बोल है जी कोई यार नहीं किसे दा ये दुनिया बड़ी बेवफाई है। क्या बात है जी जड़ा तुसों गीत पसंद किता कोई यार नहीं किसे दा वाकया जी ये दुनिया बड़ी बेवफाई है। दुनिया बेवफाई न नाया इत्थे कोई भी किसे न नहीं सब मतलब प्रस्त जब मतलब निकली जाना था आखने जनाब बाय बाय। और इसने पर एक गीत भी आ लो जी सुनो और स्पेशल ब्रेड फाउंडेशन रेडियो ने पर जितने भी लिसनर इसलिए सुनी रहे उन्होंने नाम ही कर सा।

0: You're listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खलते हुए जी
7: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़िया नी एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
7: ए एमओटी वाले है किधर?
8: ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: Hanzala Mehr sahab, tusan ki vi welcome aane aan. Hon julle aan janab asan, aakhre apne program ne agle geet ne jana tusan maade kol time rahi gaya sirf 25 minute. ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਪਰ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਤਬੇਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਕਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸੋ

0: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा को लाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर, जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशागाह आलम से गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश पर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशागाह आलम से गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे। जिसे तुम वक्त कहते हो, जिसे तुम वक्त कहते हो, धुंधलका सा कोई जैसे जमीन से आसमां तक है, ये कोई ख्वाब है जैसे, नहीं मालूम कि इस ख्वाब की मोहलत कहां तक है। करो जो बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ कई नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ कई नशियात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में आप हमारी नशात डिजिटल साउंड में, लिस्टर क्लियर साउंड में सुन सकते हैं। और हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं हमारे लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और यही नशात इस वक्त CV FM मिड्सबरा से भी पेश की जा रही है।

और यही नशियात इस वक्त आप टिकटॉक पे भी सुन सकते हैं। और जितने भी टिकटॉक पे हमें इस वक्त आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को भी खुश आमदेद। जी, हमारा ये प्रोग्राम आप हफ्ते में दो बार आपसे मुलाकात होती है टिकटॉक के जरिए भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी। और सामिन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करना चाहें, कॉल करना चाहें, तो आप सभी जानते हैं स्टूडियो का फोन नंबर आपका मुंसिर 01274306677। ब्रेडफोर्ड 01274306677 है स्टूडियो का फोन नंबर। और कोई गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो, तो जरूर बताइएगा, दिल में ना रखिएगा, क्योंकि दिल के हाल या आप जानते हैं या फिर ऊपर वाला। लेकिन जब आप कॉल करके हमें बताते हैं, फरमाइश हम तक भेजते हैं, तो जरूर आज के इस प्रोग्राम का उसे हम हिस्सा बनाएंगे। स्टूडियो का नंबर आप सभी को बताते चले, 01274306677 ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है, 01274 स्टूडियो का फोन नंबर है 306677। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए कोई फरमाइश भेजना चाहें, तो हमारा व्हाट्सएप भी आपके लिए हाजिर है, 00447-800-599-563। दैट्स 00447-800-599-563। आइएगा, तशरीफ लाइएगा, बताइएगा हाल अहवाल, किस हाल में हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं आप। और जहां तक मौसम की बात है, मौसम तेजी से बदलता जा रहा है। आइए, तो इससे पहले कि हमारी बातें बहुत तवील हो जाएं और आप साथी बोर होना शुरू हो जाएं, आप सुनने वालों को एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं हम। और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम। मैं जो गुजरा उनकी गलियों से वो फरमाने लगे, मैं जो गुजरा उनकी गलियों से वो फरमाने लगे, आज से एक और दीवाना हमारा हो गया।

0: और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, मिलते जुलते हसीं वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। फिल्म का नाम था जनून। जनून का भी एक अपना ही कानून होता है। शायरी थी समीर की, मौसीकी थी आनंद मिलन की, आवाज थी अनुराधा पौडवाल और साथियों की। सामिन, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाना चाहें तो भी आप वहां भी हमारी ये नशात सुन सकते हैं, www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और इस वक्त आप हमें टिकटॉक पे भी मुलाजा फरमा रहे हैं। और अब एक और गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मकसूद आबिद साहब, वेलकम। खुश हमदेद दरवेश को भी खुश हमदेद। और अब यूं करते हैं कि अगली ब्रेक ज्यादा दूर नहीं है, उस ब्रेक से पहले हम एक गीत आप सुनने वालों को और सुनाएंगे, जब शाम डले। अजी यह खूबसूरत गीत है, उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वालों को पसंद आएगा।
1: This is Ling Ling FM.

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 FM।
0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: सिर्फ 100 पाउंड से। जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
1: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
0: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस योर चॉइस। Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

और सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेब रेडियो पे भी सुनते हैं। जी हां, डेब प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से यॉर्कशायर में सुन सकते हैं। और यही नशात इस वक्त आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर भी पेश की जा रही हैं, और राद्रम का जो डेब प्लस है उस पर भी ये नशात सुनी जा सकती हैं। और सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदेद। कहीं जवाब भी देने को जी नहीं करता, कहीं जवाब भी देने को जी नहीं करता, कहीं सलाम से पहले सलाम करता हूँ। इस वक्त किबला मोहतरम जनाब सफदर हमदानी साहब भी लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हमारी बातचीत टिकटॉक पे जारी और सारी है। लेकिन आप सुनने वालों को एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं, और इस गीत के बाद होती है आपसे मजीद मुलाकात। कोई गीत सुनना चाहें फरमाइश हो तो जरूर बताइएगा, स्टूडियो का नंबर मिलाइएगा 01274306677 ब्रेडफोर्ड 01274306677। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, आपके मेजबान हैं सैयद हसन।

और सामिन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे और साथ साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी जनाबे सफदर हमदानी साहब से। बहुत खूबसूरत हसीन यादें रेडियो की दुनिया की ताज़ा कर रहे थे। कुछ हमने अपनी यादें उनके साथ ताज़ा की, कुछ उन्होंने हमसे। और सामिन अगर आप इस वक्त हमें टिकटॉक पे लाइव देख रहे हैं तो इसे डबल टैप कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे दिगर दोस्त अहबाब हैं वो भी हमारी नशियात को देख सकें, सुन सकें, शेयर कर सकें।

और सामी ने शायद आपने शेफील्ड से हमें याद किया, बेहद शुक्रिया आपका। और अगला गीत हम आपके नाम करेंगे, आपने इसकी फरमाइश की है। खूबसूरत गीत है, आवाज है किशोर कुमार और लता की, फिल्म का नाम है जांबाज। तेरा साथ है कितना प्यारा।

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
18: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
19: और हर सूर दिल को छो जाए,
20: वही है Link FM.
17: दिल से आपके साथ
20: Link FM.

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशियात आप डेब प्लस पे भी सुनते हैं। जी हम ब्रेडफोर्ड में आप DAB रेडियो पे भी हमारी नशियात सुन सकते हैं, और यही नशियात इस वक्त लिंक FM शेफील्ड से भी 96.7 FM पर पेश की जा रही हैं। और सामिन अब हमारे बहुत ही रेगुलर और बहुत ही मोहतरम सुनने वाले जनाब शकील साहब मौजूद हैं, जिन्हें आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब शकील साहब।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: जनाब शकील साहब क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत से?
1: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आवाज ठीक आ रही है।
0: जी जी आपकी आवाज हमें बेहतरीन आ रही है।
1: तमाम सुनने वालों को मेरे
0: वालेकुम अस्सलाम। सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
1: सलाम अली भाई हैं हमारे, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, सादिया बहन है, सनार साहब अगर सुन रहे हैं उनको भी आदाब, और भी जितने सुनने वाले हैं सबको मेरे सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुँचे।
1: तो ये गजल है अख्तर आजाद लिखने वाले
0: हैं। अख्तर आजाद जी जी इनायत कीजिए।
1: अब हुस्न और इश्क के भी किस्से बदल गए हैं।
0: आहा।
1: मंजिल थी एक लेकिन रास्ते बदल गए हैं। किस पर यकीन कीजिए ये दौरे मतलबी है, लगता है खून के भी रिश्ते बदल गए हैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: शुक्रिया। आंखें बता रही हैं जाहिर है दिल का हाल, वो बेवफा नहीं थे कितने बदल गए हैं। हम जानते हैं फिर भी पहचानना है मुश्किल,
0: वाह वाह,
1: कुछ दोस्तों के चेहरे बदल गए हैं।
0: बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया। उनको पता था शायद एक दिन लगेगी ठोकर,

0: अतीत के भी लहजे बदल गए हैं। है वक्त का तकाजा चुपचाप घर में रहिए,
1: वाह वाह,
0: चाहत वफा मोहब्बत जज्बे बदल गए हैं।
1: बहुत खूब।
0: क्या खीशे कहते हैं, मासूमियत कहीं पर गुम हो गई है अख्तर, मासूमियत कहीं पर गुम हो गई है अख्तर, लगता है शहर जाके बच्चे बदल गए।
1: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह।
0: शुक्रिया। तो एक छोटी सी गजल है, शकील इब्ने शर्फ ने का नाम है। वो कहते हैं, मिटे हैं जैसे हम एक शख्स की खुशी के लिए,
1: वाह वाह,
0: मिटे हैं जैसे हम एक शख्स की खुशी के लिए, मिटा ना होगा कोई इस तरह किसी के लिए। कभी किसी के भरोसे पे जंग मत करना, कभी किसी के
1: भरोसे पे जंग मत करना,
0: करना कोई किसी से उलझता नहीं किसी के लिए।
1: क्या कहने, ये शेर फिर पढ़िएगा, वाह वाह।
0: कभी किसी के भरोसे पे जंग मत करना, कोई किसी से उलझता नहीं किसी के लिए। शुक्रिया। वो फैज उठाता रहा मेरी सादा लोही का, वो फैज उठाता रहा मेरी सादा लोही का, फरेब खाता रहा मैं खुद आगही के लिए। फिर कहते हैं, गुलों का खिल के बिखरना तो अमरे लाजिम है, गुलों का खिल के बिखरना तो अमरे लाजिम है, दुआएं मांग दिलों की शुगिफ्तगी के लिए। ये और बहुत पतंगों को खाक होना पड़ा, चिराग हमने जलाए थे रोशनी के लिए।
1: बहुत खूब।
0: फिर उसके बाद तुम्हारा सुराग खो बैठा, फिर उसके बाद तुम्हारा सुराग खो बैठा, ठहर गया था मैं रस्ते में दो घड़ी के लिए। तो आखिरी शेर है, उलझ गए हैं खुद अपने ही मसलों में शकील, उलझ गए हैं खुद अपने ही मसलों में शकील, चुने गए थे हम औरों की राहबरी के लिए।
1: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह।
0: शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील साहब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तशरीफ लाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और सामिन, अभी जनाब शकील साहब लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे, और अब यूं करते हैं कि अपने जो भी साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टिकटॉक पे, इनकी तरफ बढ़ते हैं। पहले माइक का थोड़ा सा इत्माम कर लें हम।

0: और सामिन, अब यूं करते हैं कि टिकटॉक की जो हमारी महफिल है उनकी तरफ चलते हैं, जहां पे हीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हीर। अस्सलाम
1: जी
0: वालेकुम
1: वालेकुम वालेकुम
0: जी,
1: अस्सलाम।
0: क्या हाल है? ठीक हैं आप?
1: और
0: खैरियत
1: सुनने
0: से हैं?
1: वालों को अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का बहुत करम। आप बताइए आप कैसे
0: ए
1: हो।
0: अल्लाह का बड़ा एहसान है, खैरियत है। आप सुनाइए, ठीक हैं, खैरियत से आप?
1: जी, अल्लाह
0: जी
1: का
0: जी
1: शुक्र। तमाम सुनने वालों को भी ईद की तरफ से प्यार भरा सलाम।
0: वालेकुम
1: और
0: अस्सलाम।
1: आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी हस्ती आरिफ हैं, जो आपकी इजाजत से अगर आप
0: जी
1: सुना
0: जी इनायत,
1: सकें।
0: आज पहली बार इन्हें सुनने का इत्तेफाक
1: जी
0: होगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
1: जी जरूर। आरिफ साहब अगर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना
2: जी
1: तारुफ
2: अस्सलाम
1: फरमाइए।
2: वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक
0: वालेकुम
2: हैं?
0: अस्सलाम जनाब मोहतरम।

0: 3066677.
1: और सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंग महफिल में खुश आमदीद। और यूं करते हैं कि अब हीर हमारे साथ टिकटॉक पे मौजूद हैं। अगर आप भी तशरीफ लाना चाहें तो आप टिकटॉक पे भी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। और यही नशात इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से 1430 AM पर, लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर। तो अब चलते हैं और हीर से कुछ सुनते हैं कि वो आज क्या सुना रही हैं। जी हीर
2: जी,
1: वालेकुम
2: सलाम। ना है उसको मुझसे गफलत, ना वो जिम्मेदार कम है। ना है उसको मुझसे गफलत, ना वो जिम्मेदार कम है। ये अलग है उसकी फितरत, वो वफाशार
1: कम है, बहुत खूब।
2: मेरी हसरतें मिटेंगी, मेरे ख्वाब होंगे पूरे। मेरी हसरतें मिटेंगी, मेरे ख्वाब होंगे पूरे। मुझे मुझे अपने इस यकीन पर जरा एतराज कम है।
1: कम है, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: ना बढ़ाए और दूरी कोई आने वाला मौसम। ना बढ़ाए और दूरी
1: कोई आने वाला मौसम।
2: चलो चलो फासले मिटा ले के अभी दरार
1: कम है, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: ये तुम ही पे मुनहसर है कि तुम आओ या ना आओ।
1: ये तुम्ही पे मुनासर है कि तुम आओ या ना आओ।
2: क्या लाओ, मैं भला ये कैसे कह दूं, मुझे इंतजार
1: कम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने।
2: यही चाहते थे हम भी कि नाराज दिल आया हो। यही चाहते थे हम भी कि नाराज दिल आया हो, मगर मगर अपने आंसुओं पे हमें
1: इख्तियार कम है। बहुत खूब, बहुत खूब।
2: वो उठा था एक तूफान जो मचा गया तबाही। वो उठा था एक तूफान जो मचा गया तबाही। अभी आंधियां थमी हैं तो अभी रोबार
1: कम है, बहुत खूब।
2: लास्ट स्टूडेंट से कहते हैं कि कहीं खो गए तसव्वुर जो बिखर गया। कहीं खो गए तसव्वुर जो बिखर गया। तू शफा ये कैसे कह दे कि वो बेकरार
1: कम है। बहुत अच्छे, खूबसूरत था, वाह वाह, क्या कहने।
2: आपकी सुनाता का बहुत शुक्रिया
1: जी। जी
2: जी
1: सही सही।
2: अभी हमारे साथ शामिल है उत्तर .com और साथ में है हमें ज्वाइन किया है
1: राजा मजर साहब को भी हम लाइव ले लेंगे। अगर ये इनविटेशन भेजें तो इन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं, यकीनन हमारे कोलीग हैं। जी जी, आप देख लीजिए, आप जिन्हें भी लाइव लेती हैं पहले उनसे बात हो जाती
2: है। जी
3: फारूक इकबाल सर मेरा नाम है, ई-यूटर्स, ई-यूटर्स
2: एजुकेशन।
1: अच्छा फारूक इकबाल साहब, खुश आमदीद आपको कहते हैं।
3: जी बहुत शुक्रिया सर।
1: जी जी क्या सुनाएंगे आज।
3: अच्छा सर, मैं एक एक शायरी है, गजल, मैं वो आपको सुनाऊंगा।
1: इनायत कीजिए।
3: बजा के आंख में नींदों के सिलसिले भी नहीं।
1: बजा के आंख में,
3: आंख में नींदों के सिलसिले
1: भी नहीं।
3: शिकस्ते शिकस्ते ख्वाब के आप मुझ में हौसले भी नहीं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा है।
3: शिकस्ते ख्वाब के अब मुझ में हौसले भी नहीं। नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी।
1: परवीन चक्रवाला,
3: ये खबर
1: दुश्मनों ने दी होगी।
3: वो आए आके चली भी गए, मिले भी नहीं।
1: मिले भी नहीं, बहुत खूब। परवीन चक्र का खूबसूरत कलाम,
3: जबरदस्त है। ये कौन लोग अंधेरों की
1: बात करते हैं।
3: ये कौन लोग
1: अंधेरों की बात करते हैं। अभी तो चांद,
3: अभी तो चांद
1: तेरी याद के ढले भी नहीं। क्या कहने, क्या कहने,
3: क्या बात है परवीन चक्र साहब,
1: क्या कहने।
3: अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे।
1: अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे।
3: रफूगर के हाथ थकने लगे। अभी तो चाक मेरे जख्म के
1: सिले भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब।
3: खफा खफा अगरचे हमेशा हुए मगर अब के वो बरहमी है कि हमसे उन्हें गिले भी
1: नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब।
3: जी सर,
1: परवीन चक्र का एक शेर याद आ रहा है कि
3: जी
1: रंज होता है बहुत दिल को रवैये से तेरे, दुख पहुंचता है बहुत दिल को रवैये से तेरे, और मदावा तेरे अल्फाज नहीं कर सकते।
3: वाह वाह माशाल्लाह
1: जनाब,
3: जबरदस्त।
1: कुछ और भी सुनाना चाहें तो हमारे पास थोड़ा वक्त है।
3: दस्तरस से अपनी बाहर हो गए, जब से उनको, जब से हम उनको मैसर हो गए। ये परवीन ठाकुर साहिब का एक शेर है,
1: जी जी
3: शायरी है ये।
1: जी जी इनायत कीजिए।
3: दस्तरस से अपनी बाहर हो गए, जब से हम उनको
1: मैसर हो गए।
3: हम जो कहलाए तलूब महताब, डूबते सूरज का मंजर हो गए।
1: मंजर हो गए, बहुत खूब।
3: शहर खुबान का यही दस्तूर है, मुड़ के देखा और पत्थर हो गए।
1: क्या कहने, लाजवाब है, वाह वाह।
3: बेवतन कहलाए अपने देश में, बेवतन कहलाए
1: अपने देश में,
3: अपने घर में बेघर हो गए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: सुख सुख तेरी मिरास थी, तुझको मिले, दुख हमारे थे मुकद्दर हो गए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: वो शराब उतरा रगो पे में के हम,
1: वो
3: शराब उतरा
1: रगो पे में के हम,
3: पे मैं के हम, खुद फरेबी में हम समंदर हो गए।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छे।
3: तेरी खुद गर्जी से खुद को सोच कर, तेरी खुद गर्जी से
1: खुद को सोच कर
3: आज आज हम तेरे बराबर हो गए।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या
3: अरे सर, आप मुनासिब समझे तो थोड़ा सा अगर मैं तारफ करवा दूं।
1: जी जी
3: सर, फारूक इकबाल जैसे मैंने आपको बताया सर।
1: कहां से आप हमें जानकारी थे?
3: जी जी सर, ई-यूटर्स के नाम से हमारी एक ऑनलाइन एकेडमी है सर।
1: जी जी, तो आप कहां पे बेस्ड हैं, कहां से आप कॉल कर रहे
3: हैं? सर हम G103
1: इस्लामाबाद
3: में रजिस्ट्रेशन है।
1: जी जी,
3: G103 इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, लेकिन फिजिकल ऑफिस जो है हमारा मीरपुर आजाद कश्मीर में है।
1: बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाते रहिएगा मोहतरम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जासिब साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। जनाब क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से आप? ये हमारे साथ ये लाइन पे मौजूद है इस वक्त जासिब साहब? जी आप
2: मौजूद तो
1: है। अच्छा, सही सही। ये सना हमारे जो यहाँ से क्रोस्पोनेंट हैं वो वाले हैं रजासब साहब, ये डिफरेंट है। रजासब मुगल साहब हैं या मुख्तलिफ हैं? ये एक तो हमारे यहाँ से लोकल जर्नलिस्ट हैं वो हैं या और हैं?
2: राशिद मोहम्मद
1: हैं। जी जी, अच्छा, रजासब राशिद मोहम्मद, अच्छा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अच्छा जी जी, सही सही। या मैं उधर यूं करता हूँ कि अपने रेडियो के सुनने वालों के लिए एक खूबसूरत सा गीत पेश करता हूँ और यहाँ लगाते हैं हम, ठीक है? और सभी, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप भी कॉल करना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677। आइए अब आपको एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं, आवाज है उदित नारायण की।

0: और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज थी उदित नारायण की। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा, खूबसूरत गीत था। और टिकटॉक पे भी हमारी महफिल जारी हो सारी है, बहुत से साथी हमारे साथ उस पर मौजूद हैं, सना सेहत अच्छी ना होने के बावजूद भी हमारे साथ हैं। हम बहुत सी दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और सलामती दे। हीर हैं हमारे साथ, सुंदस हैं, और जनाब आरिफ साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो अब बारी आती है, सुंदस आप आइए और कुछ सुनाइए।
1: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है
0: वालेकुम
1: आपके?
0: सलाम, हम सभी खैरियत से हैं, आप सुनाइए। मुझे वो जो खत वाला नहीं होता था, एक जमाने में खत लिखते थे और कहते थे कि आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं, तो बस
1: जी
0: जी
1: जी
0: सही।
1: बस करें, मुझे वो लतीफा याद आ जाएगा।
0: कौन सा?
1: खैर ना करें, अभी मुझे सुनाने दे।
0: जी, सुनाइए।
1: और शकील भाई और सब तमाम सुनने वाले को बहुत ही सलाम और बहुत सी दुआएं। और कहते हैं कि एतबार साजिद का कलाम
0: क्या
1: है
0: कहने
1: कि
0: एतबार साजिद?
1: कहते हैं कि ये हदें ना तोड़ देना, ये हदें ना तोड़ देना, मेरे दायरे में रहना,
0: हाँ, ये हदें ना
1: मुझे
0: तोड़
1: अपने,
0: देना, क्या
1: हाँ जी,
0: कहने, आप
1: ये हदें ना तोड़ देना,
0: मेरे
1: मेरे
0: दायरे में
1: दायरे में
0: रहना,
1: रहना, मुझे अपने दिल में रखना, मेरे हाफ़ज़े में रहना,
0: क्या कहने एतबार साजिद के,
1: शुक्रिया,
0: बहुत।
1: मेरा बोझ खुद उठाना, मेरा कर्ब आप सहना,
0: हाँ,
1: मेरे जख्म बांट लेना, मेरे रत जगे में रहना,
0: बहुत खूब।
1: मेरे हुक्म खुद सुनना, मेरी मोहर खुद लगाना, मेरे मशवरे में होना, मेरे फैसले में रहना,
0: बहुत खूब,
1: मेरे मंजरों में बसना, मेरी गुफ्तगू में होना,
0: वाह वाह,
1: मेरे लम्स में समाना, मेरे जायके में रहना,
0: बहुत खूब।
1: कभी धूप के नगर में मेरा साथ छोड़ जाना,
0: हाँ,
1: कभी मेरा अक्स बनकर मेरे आईने में
0: आईने में
1: रहना,
0: रहना, बहुत खूब।
1: कभी मंजिलों की सूरत मेरी दस्तरस से बाहर,
0: हाँ,
1: कभी संगे मील बनकर मेरे रास्ते में रहना,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मेरे हाथ की लकीरें तेरा नाम बन के चमके, मेरी ख्वाहिशों की खुशबू मेरे जायचे में रहना,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: ये हदें ना तोड़ देना, मेरे दायरे में रहना, मुझे अपने दिल में रखना, मेरे हाफ़से में रहना,
0: बहुत खूब।
1: मेरे हाफ़से में रहना,
0: क्या कहने जनाब एतबार साजिद, बड़े धीमे लहजे के शायर थे और रिसेंटली वो इस दुनिया से रुख्सत हुए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत ही मेरे फेवरेट शायर थे, बड़े धीमे लहजे के शायर थे, बड़ी खूबसूरत शायरी थी उनकी। जी,
1: बिल्कुल।
0: एक आध और सुना दीजिए सुंदर।
1: सर आपकी
0: अच्छा
1: इजाजत है तो यहाँ पे एक मैसेज आया है कि उन्होंने कहा है इंग्लैंड के पेल बॉय है, उन्होंने कहा कि ये सुंदर के बाद
0: चलिए
1: मैसेज
0: चलिए, इनसे
1: भेजना
0: बात कर लेते हैं। जी,
1: जी, शुक्रिया।
0: अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम
1: एक
0: वालेकुम।
1: मिनट, अपना माइक अनम्यूट
0: जी
1: कीजिए
0: जी नाम
1: और
0: सबसे पहले इनसे
1: टाइम
0: पूछ,
1: बहुत, हाँ जी, आप अपना नाम भी लगता है
0: बताइए
1: उनको
0: क्योंकि टाइम
1: आवाज
0: बहुत
1: नहीं आ
0: कम
1: रही।
0: है। जी,
1: अपना माइक इंग्लैंड टेबल अनम्यूट कीजिए और अपना कलाम सुनाइए जो आप सुनाना चाहते हैं।
2: हेलो, अभी आवाज आ रही है
0: जी जी
2: आपकी?
0: अगर आपकी आवाज आ रही है, नाम बताइएगा अपना।
2: मेरा नाम मुदस्सिर है जी, मैं लंदन से बोल रहा हूँ।
0: मुदस्सर साहब, खुश आमदेद कहते हैं, आप लंदन में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। आज के इस प्रोग्राम में क्या सुनाएंगे? इस वक्त आपकी आवाज लाइव रेडियो पे भी जा रही है, अब ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से।
2: जो आप सुनना चाहेंगे आपको
0: कोई एक
2: सुनाऊं?
0: गजल सुना दीजिए जो आपकी फेवरेट हो।
2: चले, गजल
0: जी
2: आपको सुनाते हैं जी,
0: जी जी
2: शेर, कुछ शेर आपको सुना देता
0: जी
2: हूं।
0: जी मुसलसल गजल के बजाय अशआर हूं तो ज्यादा अच्छा लगता है, एक कहीं कहीं से। जी, सीधा सीधा।
2: जी, वो कहते हैं कि गमे शबे फिराक से वहशत उसे भी थी,
0: आहा, मोहसिन
2: मेरी,
0: नकवी, वाह वाह,
2: जी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी,
0: बहुत खूब।
2: मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का,
0: रास्ता
2: रास्ता चल बदल
0: बदल
2: कर
0: के
2: चलने
0: चलने की
2: की
0: आदत
2: आदत
0: उसे भी थी, बहुत खूब।
2: उसे भी
0: जी
2: थी।
0: जी
2: इसके अलावा गाना, गाना आपको, जब आप गाना लगाते रहे तो इस तरह आप पीछे इंट्रोडक्शन भी दिया करें ना, तो फिर बड़ा अच्छा
0: जी
2: लगता
0: जी
2: है।
0: जी जी
2: जैसे कि वो गाना जैसे सुना सुना दे ना, तो उसके पीछे भी जैसे वो इंट्रोडक्शन चलता है ना, तो उस तरह अगर आप लाइव करें ना तो बड़ा
0: जी
2: अच्छा
0: जी
2: रहेगा।
0: जी जी जरूर।
1: चलिए,
0: बाकी
1: थैंक यू
0: आपका
1: सो मच,
2: आपका प्रोग्राम अच्छा है, बड़ा अच्छा, मजा आता है।
0: सलामत रहिए, तशरीफ आते रहिएगा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और
3: एक्चुअली यहाँ पे टाइम कम है तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को हम लें क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के आए हैं, उनको हम सुनना चाहेंगे। जी सर, आपकी इजाजत से अजहर साहब को हम ले लेते हैं।
0: जी जी जरूर जरूर।
3: जी अजहर, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और एक दो लाइनों का शेर सुना दें जो आपको सही लगे।
0: जी जी
3: जी अजहर साहब।
0: जी जी, अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब।
2: जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम,
0: क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से आप?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम, आप से दुआएं हैं। तरन्नुम में दो शेर सुना देता हूँ।
0: जी जी इनायत।
2: करके खुद को निसार बैर

0: क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह, उस पे मैं वार बैठा हूँ, बहुत अच्छे, वाह वाह।
1: मिलना दुश्वार है बहुत तुमसे, कि मिलना दुश्वार है बहुत
0: उनसे
1: तुमसे, मैं तो दरिया के पार बह।
0: क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत है, फिर से पढ़िएगा ये शेर, वाह वाह बहुत अच्छे।
1: दरिया
0: के पार
1: मिलना दुश्वार है बहुत तुमसे, कि मिलना दुश्वार है बहुत तुमसे,
0: मैं तो दरिया के पार बैठा हूँ। और मोहतरम, मुझे इस शेर याद आ गया जनाबे अदीम हाशमी का, कि हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, इस पार भी तन्हाई उस पार भी तन्हाई।
2: अरे क्या कहने, अजर आपका भी यार,
0: क्या कहने, बहुत खूब,
3: बहुत ही खूबसूरत अंदाजे पिया, बहुत ही खूबसूरत,
0: बहुत ही अच्छी आपने तरन्नुम में पेश किया कलाम,
3: बिल्कुल बहुत अच्छे। अभी हम बढ़ते हैं आगे अगले कॉलर की तरफ,
0: थोड़ी
3: देर से वो वेट कर रहे हैं। भट्टी इन्फो के नाम से उनकी आईडी है, अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर हमें ज्वाइन करें और अपना कलाम पेश करें।
0: जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम सलाम।
0: जी भट्टी साहब, खुश आमदीद।
4: तेरे चेहरे की तरह, तेरे
0: चेहरे की तरह
4: और मेरे सीने की तरह,
0: आहा,
4: मेरा हर शेर दमकता है
0: नगीने की तरह। क्या कहने, फिर से पढ़िएगा, वाह वाह।
4: तेरे चेहरे की तरह
0: और मेरे सीने की तरह,
4: सीने की तरह, मेरा हर
0: शेर दमकता है नगीने की तरह। अपनी शायरी की खूब किसी ने मियां मिठू बन के तारीफ की है, बहुत खूब।
4: फूल जागे हैं कहीं तेरे बदन की मानित, फूल जागे हैं कहीं
0: तेरे बदन की मानिंद,
4: औस महकी है कहीं तेरे पसीने की,
0: पसीने की तरह, बहुत ही अच्छा है, वाह वाह।
4: ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले
0: दोस्त होता है,
4: ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले दोस्त होता है
0: समंदर
4: में, तुम में
0: सफीने की तरह। ये शेर तो बड़ा हमने पहले से सुन रखा था, लेकिन आज आपने पूरी गजल सुना दी, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा ये शेर। ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले दोस्त,
4: छोड़ के
0: तूफान में जाने वाले दोस्त
4: होता है
0: तलातुम में सफीने की तरह, वाह वाह।
4: ऐ मेरे गम को जमाने से बताने वाले,
0: ऐ मेरे गम को जमाने से बताने वाले, आहा,
4: मैं तेरा राज छुपाता हूँ दफीने की।
0: क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत है, वाह वाह।
4: तेरा वादा था, तेरा वादा था कि इस माह जरूर आएगी, अब तो हर रोज गुजरता है
0: महीने की तरह। क्या कहने, ये सहले मुमतने गजल है, क्या कहने, हर शेर ही इसका एक नगीने से कम नहीं है। कौन शायर है इसके?
4: जी सॉरी, मैं ये शायर का नाम नहीं
0: याद, हम शायद आखिरी मुकम्मल कर चुके हैं या अभी कुछ रहता है इसमें?
4: कर चुका मुकम्मल, लेकिन शायर मुझे याद नहीं है।
0: इसका पहला शेर फिर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत था पहला शेर।
4: तेरे चेहरे की मतलब तेरे
0: चेहरे की तरह
4: और मेरे सीने की तरह, मेरा हर शेर दमकता है
0: नगीने की तरह। और ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले, ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाले दोस्त होता है तलातुम में सफीने की तरह। आप सभी सुन रही हैं साथ जो है। जी जी
3: जी, बहुत हो माशाल्लाह।
4: एक और है, चर्चे तेरे हुस्न के, चर्चे तेरे हुस्न के तो आम बहुत थे,
0: चर्चे तेरे हुस्न के तो आम बहुत थे,
4: तो आम बहुत थे, पर हम पे तो पहले ही इल्जाम
0: बहुत थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, क्या कहने, खूबसूरत।
4: प्यास से जो ना लौट आते, प्यास से
0: जो ना लौट आते
4: तो और भला क्या करते, सुराही फकत ए थी और जाम बहुत
0: थे। बहुत थे, क्या कहने, बहुत।
4: ऐ मेरे पर्दा नशी, ऐ मेरे पर्दा नशी, तू जरा एहतियात ही रखना, ऐ मेरे पर्दा नशी, तू जरा एहतियात ही रखना, कि इस शहर में हुस्न का नीलाम बहुत है।
0: बहुत है, बहुत है, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। पहली गजल भी बहुत ही खूबसूरत थी और दूसरी भी बहुत अच्छी। अगले प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाइएगा मोहतरम।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा अंदाजे प्यार बेटी साहब आपका।
0: वो थोड़ा सा टाइम है अगर आपको ये,
3: हम आगे अगले कॉलर की तरफ अगर आप
0: जी जी जी जी जी जी जरूर
3: करना चाहते हैं।
0: दो तीन मिनट,
3: दो तीन मिनट है हमारे पास। और फैसल कोकर अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो जरूर।
0: जी जी, खुश आमदेद
5: जी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया।
0: वेलकम, खुश हम दे।
5: अभी एक शेर सुनाएंगे आप।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
5: देखा जो तीर खा के
0: कमींगा की तरफ,
5: कमींगा की तरफ।
0: आहा,
5: देखा जो तीर खा के
0: कमींगा की तरफ,
5: कमींगा की तरफ। तो अपने
0: अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, क्या कहने।
5: बहुत शुक्रिया।
0: दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं, दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं। देखना है छोड़ता है मुझ पे पहला तीर कौन।
3: अरे वाह, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया
3: जी। जी सर,
0: कोई एक आध कॉलर और लेती है तो ले लें।
3: मैं चेक करती हूँ, लेकिन फिलहाल कोई नहीं है।
0: अच्छा, यूं करते हैं सुंदर से एक शेर सुन लेते हैं। सुंदर से एक शेर सुना सकती हैं आप?
6: जी जी नहीं जी। मैं तो दो सुनाऊंगी।
0: चलिए दो ही सुना दीजिए।
6: मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं दो
3: सुनाऊं। मैं चाहूंगी कि आप एक सुनाएं, एक आप सुनाएं और एक आरिफ साहब सुनाएं।
6: नहीं,
0: अच्छा एक हमने सना से भी सुनना है उनकी, एक सना से भी सुनना है अगर वो सुनाना चाहें तो। सना आप सुनाना चाहेंगी एक शेर? नहीं, मैंने अभी सना से भी गुजारिश कर रखी है, एक उनसे सुनेंगे और फिर आगे चलेंगे। जी जी सना, कुछ
6: सना किधर है? सना किधर बैठी है?
0: सना कोने में बैठी।
7: You are listening to Link FM.
8: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
10: Nazir Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
11: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
12: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2 Day project, bringing together different faiths and cultures. cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
13: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر. ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ S92VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
14: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
12: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm 96.7.
15: 96.7 Link FM.
7: You are listening to Link FM.
16: You're listening to Link FM on 96.7 FM. Linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
17: Assalamu alaikum, main hoon Farooq Rashid.
18: میں اورنگزیب چودھری.
19: میں اسلم بٹا.
20: میں جی حسین کپور شفیل سے.
21: میرا نام اشفاق حسین کیانی ہے.
22: میرا نام احمد اسکرا.
23: میں ارشد خان شفیل سے ہوں.
24: میرا نام انجم افتاب ہے.
25: میرا نام عمرانہ ہے. کیپ لسننگ ٹو لنک ایف ایم 96.7.

遥远，将你给我。

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Link FM, your number one community radio station.

0: क्यों होता है?
1: धैर्यवान, सब्र वाला।
0: You mean patience वाला?
1: Yes, yes, yes.